पुकारे आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा। लता जी और तलत महमूद का ये जोन थे। दोस्तों हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर, और वो है अल्लाह जाने क्या होगा आगे। मनोज कुमार हरियाली और रास्ता का ये जोंग है, हमारे यारों हरियाली रास्ता का ये जोंग है।

और अल्लाह तो सब कुछ जानते हैं कि इश्त में क्या क्या हो जाते हैं। तो दोस्तों इश्त में बहुत कुछ हो जाते हैं। तो हम चलते हैं इसके बाद में, हम चलते हैं मुझसे इतना प्यार मत करो, लता जी तलत महमूद का ये सॉन्ग है। मुझे इतना ज्यादा प्यार मत करो कि मुझे अपने आप पे गर्व हो जाए।

इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल एक मैं हूँ जो बादल आवारा जो यहाँ से वहां तक और वो चलते ही तदलत महमूद का और नाइटिगेल वताजी का जोंग थे आशा परीक सुनील लतीश ने में काम किए उसके बाद में हम चलते हैं दोस्तों और वो है नाइटिगेल लता मंगेशकर और को किशोर कुमार का ये सॉन्ग है लिखा है तेरी आंखों में और आपकी आंखों में क्या है आपकी आंखों में क्या है ओ तो आपको पता है कि किसके सपने आप देख रहे हैं

और दोस्तों लिखा है तेरी आंखों में और आपकी आंखों में क्या लिखा है आपको तो पता है। साथ ही साथ हम चल रहे कि पन्ना की तमन्ना में नाइटिंगेल लता जी किशोर दादा का ये सॉन्ग है। देवानंद सिंह तमन ने इस फिल्म में काम किया, इस मूवी में क्या, और पूछा है कि तुम्हारे तमन्ना क्या है, पन्ना ने पूछ रहा है।

गौड़ मिल जाता है, हीरा मिल जाता है, नैतिकता जी का ये जोन थे। उसके बाद प्रेम चलते है मौफी के नाम असली नकली निखती होने द्रियन शस्तक का, जिसमें देवानंद ने काम किया है। हमारे दोस्तों मौफी के नाम है असली नकली का एक सॉन्ग है परमा श्री मोहम्मद रफी और नैतिक लता जी का सॉन्ग है, जिसमें शंकर जयस्कन का म्यूजिक पे इसे काम किया है हसर जयपुरी के साथ में। तो हम चलते हैं मूवी का नाम है असली और नकली।

से बांध लिया है मौफी के नाम थे। असली नकली के बांध पे हम जाते हैं और मधुबाला की ओर परमाशीर मोहम्मद रफी और आशा जी का सॉन्ग है अच्छा ये मैं हारी काला पानी जोंग मूवी का नाम है।

और अच्छा ये मैं हारी चलो काला पानी का ये सॉन्ग है दोस्तों। ओल्ड एंड गोल्ड का प्रोग्राम आज हम चलाते हैं और ओल्ड एंड

प्यार ही प्यार मूवी का नाम है हमारे दोस्तों। और हाल कैसा है आपका, ये हम नहीं पूछते हैं, किशोर दादा ने पूछ रहा है। मधुबाला मूवी का ये सॉन्ग है, चलती का नाम है गाड़ी।

और हाल कैसा है आपकी आप बता दीजिए, मुझे इतना प्यार है और किससे ये आप भी मुझसे बताइए।

ये आप ही का हैप्पी स्टेशन फार ऑन हिंदुस्तानी रेडियो। हर एक काम जो आपके रेडियो के सिरे कराना है कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से, या चले आइए दफ्तर पर, खुला रहता है दोस्तों रोजाना। और आपको मानना चाहिए खास फरमाए जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह आपके पास है तो आप शौक से चले आइए फाह हिंदुस्तान रेडियो के पास। पिया तू अब तो आजा, आशा भोसले एरदी बिरमिल का म्यूजिक है। और जब ऐसा गीत है दोस्तों पिया तू अब तो आजा, तो कौन हो सकता है जो ये गीत को एक्ट किया होगा? हेलन के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। हेलन, जितेंद्र, आशा पर एक, ये सब ही काम किया। फिल्म कारवा निहरी इन सीफन तक का फिल्म है। इसी फिल्म का सॉन्ग आशा भोसले के आवाज़ में आप सुनेंगे।

आजा पिया, अब तो आजा, उसके बाद आजा पिया तुम्हें प्यार दो। बहारों का सप्ते फिल्म का नाम है, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत है दोस्तों। और ये फिल्म में आशा परेख और राजेश खन्ना दोनों इस फिल्म में काम किया। तो आशा परेख राजेश खन्ना बड़े बड़े फिल्मों में काम किया, जैसे बहारों के सपने, कटी पतंग, आन मिलो सजना वगैरह वगैरह, नाइटिंगेल, लता दीदी एंड एडी बर्मन के म्यूजिक पर।

0: अमित
1: 1919 शस्त्र के बाद आपको मालूम है दोस्तों, एक फिल्म था जिसमें धर्मेंद्र काम किया आशा परेख के साथ, फिल्म आया सावन झूम के। वाह क्या फिल्म था दोस्तों, बलराज सहनी भी इस फिल्म में काम किया और एक सॉन्ग है पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी एंड नाइटिंगेल लता दोनों के आवाज़ों में आप सुनेंगे आया सावन झूमके का टाइटल सॉन्ग। धर्मेंद्र और आशा परेख दोस्तों ये दोनों भी बड़े बड़े फिल्मों में काम किए, जैसे आए दिन बहार के, फिल्म शिकार, फिल्म समाधि और आए दिन बहार के, फिल्म शिकार, फिल्म समाधि और बड़े बड़े फिल्मों में ये दोनों काम किया दोस्तों। आपको मालूम है उन दिनों में निखिल शस्त्र के बाद है जब धर्मेंद्र एक टॉप एक्टर था और आशा जी भी कुछ पीछे नहीं था, वो भी एक टॉप एक्ट्रेस था। तो दोनों का फिल्म आया सावन झूमका जो मैंने चॉइस करके रखा उस फिल्म का सॉन्ग अभी आप सुनेंगे राफी साहब एंड नाइटिंगेल लता मंगेशकर दोनों के मीठी आवाज़ों में।

आया साउंड झूम के बाद दोस्तों, अब की बार उन दिनों के बाद है कपूर परिवार का सबसे हैंडसम बॉय शशि कपूर का फिल्म आमने सामने का एक सॉन्ग है, नैन मिला के चैन चुराना किसका है ये काम। शशि कपूर इस फिल्म में शर्मिला टैगोर के साथ काम किया दोस्तों, और शशि भी शर्मिला के साथ और कई फिल्म बनाया, बड़े बड़े फिल्म जैसे सुहाना सफ़र, माई लव, अनारी वगैरह वगैरह। तो हम सब मिलकर सुनेंगे नैन मिलाकर चैन चुराना किसका है वो काम, मुझको पता है उस जालिम का नाम।

या आपको भी पता है उस आलिम का नाम, मैं सोचा जरूर पता होगा। दोस्तों, मस्त बहारों का मैं आशिक फिल्म फर्ज, आप ये फिल्म जरूर देखे होंगे। उन दिनों में ये फिल्म कितना हलचल मचाया और जितेंद्रा फिल्म में काम किया बबीता के साथ। दोस्तों, बीते हुए दिनों में एक बात थे कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म एक्टर्स जब शुरुआत करते थे तब फिल्म फ्लॉप हो जाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा एक्टर का फिल्म फ्लॉप हो जाते थे, उसके बाद टॉप एक्टर बन जाते थे। उसी तरह से एक एक्टर भी जितेंद्रा है या था, जो जिनका एक दो फिल्म फ्लॉप हुआ फिर जाकर एक टॉप एक्टर बना। तो माइटी मुकेश नहीं है, मैंने सोचा माइटी मुकेश नहीं, राफी साहेब वंस अगेन, मस्त बहारों का मैं आशिक, जितेंद्रा एंड बबीता का फिल्म फर्स्ट का सॉन्ग।

या फिर कह पी सिशन फा हो हिंदुस्तानी रेडियो, आप सुने प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। बहारों ने किए सजदे, बहारों ने किए सजदे, फूलों ने सर झुकाया है। माइटी मुकेश के आवाज़ में आप गीत सुनेंगे, बॉम्बे बाय नाइट फिल्म का नाम है।

ओ मेरे हमराही मेरे बा थामे चलना, ओ मेरे हमराही मेरे बा थामे चलना, बदले दुनिया सारी, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। दोस्तों फिल्म गाइड, इस फिल्म में देवानंद एक गाइड था, हिट्स था, रेस हिट्स, और एक सॉन्ग है जिसने शैलेंद्रा ने लिखा है। शैलेंद्रा का असली नाम है शंकर दास केसरी लाल होना चाहिए, शंकर दास केसरी लाल शैलेंद्रा का असली नाम है। आप जानते हैं दोस्तों, एक गाना जब एक गीत जब बनता है तो लोग गाते हैं, हम हमेशा कहते हैं राफी ने अच्छा गाया, मुकेश अच्छा गाया, लता ने अच्छा गाया, किशोर कुमार ने गीत अच्छा से गाया, लिखी वो शख्स जो एक गीत लिखता है उसका नाम हम नहीं लेते हैं। वो आदमी जो बैठ कर सोच सोच के दिन रात एक गीत लिखते, उन्हें हम भूल जाते हैं, ऐसा मत होना चाहिए। शैलेंद्रा का लिखा हुआ गीत है, गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, किशोरदा एंड लता।

मेरा दिल कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। जैसे मैंने कहा दोस्तों, बहुत से एक्टर्स का फिल्म फ्लॉप हुआ है और सलमान खान का भी 2-3 फिल्म लगातार फ्लॉप हुआ। तो एक रात्रि में लगभग आधे रात को सलमान खान गोविंदा को तार किया। उन दिन गोविंदा उनका दोस्त है, तो उसे कहा कि मैं अब स्टॉप करूँगा, फिल्म फ्लॉप हो जाता, अच्छा नहीं लगता है। तो गोविंदा सलमान खान का हाथ पकड़ा, उन्हें मदद किया दोस्तों। तो सलमान खान आज इतना बड़ा एक्टर है। सलमान खान का एक फिल्म है लकी, और उसी फिल्म का एक सॉन्ग है सोनू अतनान सानी, दोनों की आवाज़ में सुन जरा।

सुन जरा सुनिए सुन जरा, इसी फिल्म का एक दूसरा सॉन्ग मैं सेलेक्ट करके रखा हूँ, लॉकी नो टाइम फॉर लव, फिल्म का नाम अनुराधा एंड उदित नारायण।

आ क्या लव सॉन्ग, जा मेरी जा रही है सनम। एक दूसरा लव सॉन्ग है दोस्तों, शाहरुख खान एंड यूही चावला ने काम किया फिल्म यस बॉस, 90s रोमांटिक सॉन्ग है। और ये गीत मैं कोई ऐसा गीत गाओ आप सभी के लिए है।

अगर आप अपन जीवन साथी के साथ हो, प्रेमी के साथ हो, या किसी और के साथ हो जिससे आप देराते हो कहने को कि आई लव यू, तो कोई बात नहीं, उसका हाथ पकड़ लीजिए दोस्तों, और स्लो मोशन का सॉन्ग चलेगा और आपको जानते हैं आपको क्या करना है, उसको पकड़ लीजिए, हाथ गले पर रख दिए या पीठी पर उसको हाथ रख दिए और तैयार हो जाइए दोस्तों, पहला सॉन्ग जो चलेगा और आप सभी के लिए। अगर इसमें उम्र के बात नहीं है, अगर आपको स्लो मोशन डांस करना है तो उम्र जवान या बूढ़ा नहीं देखा जाता है, उम्र नहीं देखा जाता, उन्हें उम्र नहीं गिना जाता है दोस्तों, इसलिए कि डांस सभी के लिए बना है। और अतिशेल खुद फोयो खसौन था तेरे लिए पहला सॉन्ग जो आप सुनेंगे, आप सभी के लिए, सभी लॉफर्स के लिए स्पेशल।

मत बैठना, खड़े रहिए, हाथ पकड़ रहिए, अभी तो और गीत बाकी है दोस्तों, और अपन प्रेमी के साथ डांस कीजिए, आंखों आंखों में हम तुम हो गए दीवाना।

मुस्कुराते हुए मुस्कुराते हुए हाथ पकड़े रहना, न मत छोड़ना दोस्तों, अभी तो पौ से नहीं है। अब की बार फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। वाह वाह वाह लवर्स। वा, वा, वा,

में भेजा है खत के बाद दोस्तों एक छोटा सा पाउसर चलेगा, लेकिन पाउसर में चाय कॉफ़ी आप इस्तेमाल कीजिए अनवेंच मो रोत या वेत एगो बाको भी विस्की मेट ऐसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये प्यार भरा पाउसर जो है इसमें सिर्फ प्यार मोहब्बत के बातें कीजिए। रिकनिंग जहाँ भरना है या वहाँ पर सौदा खरीदना वो सब बात छोड़ दीजिए, अपन प्यार के बात कीजिए। और अगर अभी आप शर्मिंदा हो, अभी यकीन नहीं आया आपके दिल में उससे कहने को कि आई लव यू, तो मैं सोचता हूँ दूसरा गीत तैयार होने से पहले आप कान में धीरे से कह दीजिए नाचते समय या गाना के बाद आई लव यू। आप यकीन के साथ मैं कहता हूँ वो मुस्कुराएंगे और हो सकता है आपके कान में भी कहेगा आई लव यू टू, तो एक पॉज चलेगा। पहला बार कहना है तो सोच

0: बाल में कुछ काला है।
1: काला?
2: तुम्हारे ख्याल में ये कौन गा रहा है?
3: कहना है आज तुमसे पहली बार, क्या आप कह दिया कि अभी आपको हिम्मत नहीं कहने को? कोई बात नहीं, अब सी सॉन्ग चलेगा दोस्तों, ये पौष के बाद अब सॉन्ग तैयार हो गया है। आप खड़े हो जाइए, अपन सहेली, अपन जीवन साथी, अपन प्रेमी का हाथ पकड़ लीजिए या कंधे पर हाथ रख दीजिए। तुमको देखा तो ये ख्याल आया

क्या खुशी की बात है, उसे हिम्मत आया, वो कहने में कह दिया कि आई लव यू, वो भी मुस्कुराए, हाथ और जबस पकड़ लिया। वाह, दो साथी मिल गया है आपस में, दो प्रेमी आपस में मिल गया, बहुत खुशी की बात है। अब की बार अभी खड़े रहिए, होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर दो।

टुकड़ों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर दे। आपको कुछ पीना है, कुछ खाना है, एक गीत के बाद अभी आपको मौका मिलेगा। अभी हाथ पकड़े रहना दोस्तों, कंधे पर हाथ धरले रहना, और अपन प्रेमी से तो आपने कह दिए है कि आई लव यू, और फिर उनसे कह देना कि मेरे गीतों का सिंगार हो तुम, जीवन का पहला प्यार हो तुम।

गीतों का सिंगार हो तुम के बाद अपन प्रेमी के साथ आराम से बैठ जाइए, चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल कीजिए। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, एक बॉटल जो एक विस्की में ऐस ब्लॉक के ऐस या सोडा के साथ, या बाको वो भी हो सकता है, रोड वैन वेते वैन वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नित्य फेल है इन बॉटल जिसकनु लॉफर्स का प्रोग्राम चल रहा है। अपन जीवन के साथी साथी के साथ प्रेम से और प्यार से बातचीत कीजिए इस सॉन्ग के साथ।

सोचने वाले तेरे जवाब नहीं के बाद आप फिर खड़े हो जाए, अपन प्रेमी का हाथ पकड़ लिए, दो कदम आगे दो कदम पीछे, स्लो मोशन डांस चलेगा और आपने तो हाँ कह दिया है, प्रेमी भी खुशी है, आप भी खुशी हो, तो अब की बार छूकर मेरे मन को किया तूने, किया तूने क्या इशारा।

शुक्र मेरे मन को किया तूने किया इशारा, अभी हाथ पकड़े रहिए, दो कदम आगे पीछे वाला बात है, आप जानते हैं स्लो मोशन डांस का प्रोग्राम चल रहा है और वो तो हाँ कह दिया है और प्रेमी भी बहुत खुशी है। अब की बार मुकेश के आवाज़ में आप सुनेंगे सुहानी चांदनी रातें, हमें सोने नहीं देंगे, आपके पाँव से नहीं मिलेगा, अगर आपको कुछ पीना है तो नाचते समय आप अपन ग्लास अपन मग पकड़ लीजिए और इस्तेमाल कीजिए।

चांदनी चांद नी रातें हमें सोने नहीं देंगे, ये लोफर्स का प्रोग्राम में एक आखिरी सॉन्ग चलेगा। अभी हाथ पकड़ रही है, पीठ पे हाथ रखे हुए तो और जबर से पकड़ लिए। दोस्तों आप जानते हैं आपका देह तो गर्म हो गए होंगे, भीतर भी गर्म हो गए होंगे। मैं कुछ बुरा बात नहीं कहता, कॉफ़ी चाय के जरिए भी हो जाता है, या एक बॉटल से पिए होंगे तो वो भी हो जाता है। तो एक आखिरी सॉन्ग चलेगा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता हो। आपके क्या विचार है? अच्छा गीत है, जरूर अच्छा होगा।

0: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता हो। डांस का प्रोग्राम अभी आप सुन रहे थे फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आप चुन है हर एक काम जो आपको रेडियो के सिरे कराना है, आप कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से।
1: मित्रों, सुख शांति संसारिक साधनों में नहीं, अपने सत्यता और सत्य स्वरूप को पहचानने में है।

मित्रों, जब मैं सूर्य उदय या सूर्य अस्त का जादू देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कोई भी बढ़ता हमेशा नहीं रहती है, कोई भी ना, और कोई भी रुकावट ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। मित्रों, इस हमेशा बदलती दुनिया में सब कुछ बदलता रहता है, सब कुछ बदलता रहता है मित्रों, इसीलिए समय के साथ चलें और जिंदगी के सफ़र का मजा लें। जिंदगी के सफ़र का मजा लो मित्रों। लीफ मैमसन असिक द माखीफान जोंस ऑफ खांग ऑफ जोंस ऑन द खांगजी बसेफिक दट हीन ऑफ कॉम्स परमानेंट इस एंड geen tegenslag lang duurt. Alles verandert in dit steeds veranderende universum, beste mensen. Dus blijf positief, vaar mee met de stroom van de tijd en geniet van de reis van het leven. Mitron, our doston. सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे मजबूत हथियार धैर्य है, और सबसे अच्छी निश्चिता विश्वास है, और सबसे प्रभावी दवा हंसी।

भाई बहनों, विश्वास और प्रार्थना दोनों दिखाई नहीं देती, लेकिन वे नामुमकिन चीज़ों को भी मुमकिन बना देते हैं। उस विश्वास और यकीन को मित्रों जिंदा रखें, जिंदा रखें। मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, खलूफ एंड खबैत जैन बैद ओन जिखबार मर जमाकन ओन मोहलक दिंगन मोहलक हाउ दत खलूफ en die overtuiging leven, beste mensen, en ga zo door. Sathiyon, agar tum peer nahi ban sakte, to jhaadi bano. Agar tum highway nahi ban sakte, to rasta bano. Agar tum suraj nahi ban sakte, to tara bano, tara bano. Kyunki ये तुम्हारे साइज से नहीं है कि तुम जीते या हारते हो मित्रों, कि तुम जीते या

आते हो तुम, जो भी हो उसमें बेस्ट बनो, अच्छा बनो मित्रों, अच्छा बनो। लिफमेंस वेस एंड स्ट्राइक अल्स ये गेन बूम कुन ज़ेन एंड अल्स ये गेन स्नेलवेग कुन ज़ेन वेस दन एन पथ। अल्स ये गेन ज़ोन कुन ज़ेन वेस दन एन स्टार, वांट हेट इज नीट डोर ये ग्रोटे दैट ये विन ऑफ फॉरलीस्ट। Wees the best in what you ook bent en doet, lieve mensen.

भाई बहनों, जब हम भगवान की कृपा और आशीर्वाद को बुलाते हैं, ध्यान करिए मित्रों, जब हम भगवान की कृपा और आशीर्वाद को बुलाते हैं और उन्हें अपनी आत्मा में समा लेते हैं मित्रों, तो आत्मा स्वस्थ हो जाती है, खजौंत हो जाती है, मन शांत और मजबूत हो जाता है, जिसे चारों ओर अच्छी भावनाएं पैदा होती हैं मित्रों, और शरीर को बहुत ताकत मिलती है, स्ट्रांग हो जाए शरीर, ताकत मिलती है मित्रों। लिफमेंसन फमे वनीर वो खोच खनाद एन जेखन इंगन ऐत नोलखन एन जे इन ओंस जिल ओपनीमन वर्त ओंस जिल खजों वर्त ओंस गेस्ट कालम एन स्टेरक वट लेड टॉट वेल विलेंडहेड इन ओंस उमगेविंग एन वरक्रेगट ओंस लिखाम इमेंस क्राख्ट वट मूय इस दिट टॉक Wat is dit toch mooi, lieve mensen. Dus ga zo door, ga zo door. Dosten, hum sabhi mein apne aur dusron ke liye shanti, sukoon ke saath saath stress paida karne ki kshamta hoti hai, hum sabhi mein problem clear karne ke liye, mitron. Aur ye hamara nazariya hai, जो उनमें से एक को बनाता और पोषित करता है। मित्रों ध्यान करिए हम क्या बोल रहे हैं। और लिफमेंसन वे आलमाल हैवन एट फरमोकन ओम जो वेल रुस्त स्टिल्ट अल स्ट्रेस द क्रिएरन फॉर ओन सेल्फ एंड फॉर अंदरन एंड हैट इज ओन हाउडिंग द एन फन बेड ऑन द हाउड एंड फुट। ये हमारे में क्षमता है मित्रों, तो बुराई भी है हमारे में और अच्छाई भी है, तो इन दोनों में से हम क्या करना चाहते हैं, कौन सी लेंगे, हम कौन वाला अच्छा रहेगा मित्रों।

दोस्तों, दयालु दिल बगीचे हैं, मतलब ब्लूमटाइन है। एक दयालु दिल बगीचे यानी ब्लूमटाइन है। दयालु विचार जड़े हैं, मतलब यादें हैं मित्रों। और दयालु शब्द फल है, दयालु कर्म फल है मित्रों। बेस्ट मेंशन फ्रिंदल का हार्तन जैन तैनन vriendelijke gedachten zijn de wortels en vriendelijke woorden zijn de bloemen. Vriendelijke daden zijn de vruchten. Pyare pyare bachon, samajhdari wo inaam hai jo aapko zindagi bhar sunne ko milta hai. Jabki aap baat karna pasand karte the. Mitron, beste en vriendelijke mensen, wijsheid is de beloning die je krijgt voor een leven lang luisteren, terwijl je liever zelf had gepraat, maar het wordt door anderen gesproken over jou. Goed of slecht, dat ligt in jouw handen. Jab zindagi aapko tootne aur rone ke sau karan de, to zindagi ko दिखा दो मित्रों कि आपके पास मुस्कुराने और हंसने के लाखों कारण है। मित्रों, मजबूत रहो, मजबूत रहो। बेस्ट मेंशन, अल्स हैट लीफन यू हंड्रेड रीडनन गीफ्ट ओम इन टू स्टोर्टन एंड टू हाइलन, लात हैट लीफन दान जिन दैट यू अन मिलियन रीडनन हैव ओम टू लाखन en te glimlachen, lieve mensen. Dus blijf lachen en blijf sterk. Blijf lachen, blijf sterk.

0: दोस्तों, हम खुश करने की कोशिश में अपनी ज़िंदगी मुश्किल बना लेते हैं भाई बहनों, लेकिन अगर हम सबके साथ खुश रहने का फैसला करें तो ज़िंदगी सच में आसान, सुकून भरी और खुशनुमा हो जाती है, खुशनुमा हो जाती है मित्रों। आर्दख मैंसन वो माकन हैत उन जेल्फ मुइल दोर इधर इन तो फ्रीड इन तो विल इन स्टेलन मर हैत लीफन वो पास एक्ट मकलक उन स्पनन एंड फ्रीड द फॉल आल्सो एयर फॉर किजन om met iedereen gelukkig te zijn. Wat mooi is toch dit? Wat mooi is het? Doston, samay kabhi hamara intezaar karne ke liye tayar nahi rehta. To phir hum hamesha sahi samay ka intezaar kyun karte hain? Dhyan kariye mitron, hum samay ka intezaar kyun karte rehte hain ki sahi samay aayega? सही काम करने के लिए कोई समय गलत नहीं होता है और गलत काम करने के लिए कोई समय सही नहीं होता है। मित्रों, इसे ध्यान से सुनने बाद में बहुत काम की चीज़ मैंने आपको बतलाया है। फ्रिंदन बेस्टमैनसन द तेत वक्त नोइट ऑफ ओन्स Waarom wachten wij dan altijd op het juiste moment? Er is nooit een verkeerd moment om de juiste dingen te doen. En er is nooit een goed moment om de verkeerde dingen te doen. Denk hier eens over na, beste mensen. Denk hier eens over na. Want wij zitten altijd met die gekke gedachten. Ating no boom, samay thik na hai, het is geen goede tijd.
1: Nee.
0: De tijd is altijd goed. Wij moeten weten wat we doen.

मित्रों, किसी को माफ करना आसान है, सहज है, लेकिन उन पर फिर से भरोसा कर पाना एक बिल्कुल अलग कहानी है मित्रों, अलग बात है, मुश्किल हो जाए। बेस्ट मैंसन ईमन फरखीफन इस मकलक मर ईमान वेर कुनन फुरत्रोवन इसन हील अंदर फरहाल इसन हील अंदर तोरी। दोस्तों, ज्ञान पर व्यवहार हमेशा भारी पड़ता है। कई ऐसी स्थितियां होती हैं जहां ज्ञान काम नहीं करता है अनेवरों को, लेकिन व्यवहार सब कुछ संभाल लेता है। आपके आचरण, आपके मनीरी, आपके संस्कार, वो वहाँ मायने रखता है मित्रों। बेस्ट मैंसन खदरख हिफ्त आल तेत अन फोर्स प्रों का हाथ ऑफ कैनस एरजेन फेल सिटिवासिस वार इन कैनस द कोर्ट्स हिट मार खदरख आलस ओपलोस खदरख। भाई बहनों, बड़े सपने देखो, कड़ी मेहनत करो और सफर का मजा लो, जीवन का सफर का मजा लो। बेस्ट मैंसन द्रूम ख्रूत ब्लेफ पॉजिटिव वर्क हार्ड एंड खनित फन द रेस फन ये लेफन खनित फन द रेस फन ये लेफन। बेस्ट मैंसन दैट इज अ मोयो ऑफ लॉसिंग। क्या सही है और क्या गलत है।

हर नई सुबह का नया नजराना, ठंडी हवा लेके आए पैगाम हमारा। जागो उठो तैयार हो जाओ, जागो उठो तैयार हो जाओ, खुशियों से भरे रहे आज का दिन तुम्हारा। सभी सुनने वालों को एक बार फिर राम राम, नमस्ते। धर्म करम पावन हिंदुस्तानी के सुबह के भजन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। फाहुन के फूल टीम की ओर से आप सभी को एक शुभ दिन पर

ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये धर्म कर्म का प्रोग्राम जो चल रहा है, अगर आप इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हो तो कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 से 5 तक 3 से 5 2 8 2 8 फिर सीफ पर आपको तार करना है।

एकमात्र स्वामी कथा मुकेश जी के आवाज में भी आप इस भजन को सुना। दादा हेमंत कुमार के आवाज में एक दूसरा भजन में तैयार करके रखा हूँ दोस्तों, तेरे द्वार खराब भगवान भगत भर देरे जोरी। ये माफ कीजिए दादा जी नहीं है लेकिन मशहूर गायक प्रदीप कुमार, और ये पुरानी काफी पुराना भजन है। हम सब मिलके इस भजन को सुनेंगे।

के द्वार खड़ा भगवान भगत भर धीरे झोली तूने रात गवाई सो के। माइटी मुकेश के ये भजन है और ये भजन जो मैं अभी आपके लिए पेश करूंगा ये फिल्म में नहीं आया है दोस्तों, ये एक नॉन फिल्म भजन है और काफ़ी पुराना भजन भी ये है। और ये भजन अगर आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि वाह, ये भजन तो बीते हुए दिनों में हम सब हमेशा सुनते थे। मुकेश जी की आवाज़ में ये भजन सुनेंगे।

क्या भजन था मुकेश जी की आवाज में, हम सब मिल के भजन को सुना। फाउन हिंदुस्तान रेडियो के सुबह के भजन कार्यक्रम धर्म करम आप सुन रहे हैं। मैं गवालो रखवालो मैया माता जी का भजन है, और ये भजन राफी साहेब पद्मश्री मोहम्मद रफी के आवाज में आप सुनेंगे।

कृष्ण भजन अभी आपने सुना राफी साहब के आवाज में। धर्म कर्म प्रोग्राम में आपके बाहर एक ओल्ड गोल्डन सॉन्ग है, ये पुराना बहुत काफ़ी पुराना नहीं, फिर भी किशोरदास हसीनों का पुजारी किशोर कुमार के आवाज़ में, किशोर कुमार और साथियों के आवाज़ में ये भजन आप सुनेंगे।

फिल्मी भजन भक्त प्रेमियों के लिए मैं पेश करता हूँ। वैसे तो बहुत से लोग हैं जो भक्ति नहीं करता, फिर भी भजन से बहुत संबंध रखता है। हमेशा सुबह सुबह भजन सुनते हैं और कभी कभी जब मौका लग जाता है तो फिर भी भजन सुनते रहते हैं, वो भी अच्छा बात है। भजन सुनने से दिल साफ रहता है, दिल में चैन आता है। काल का पहिया या लाल का पहिया घूमे भैया, राम कृष्ण हरी मना दे, दादाजी की आवाज़ में।

भूल न पापी मगर पाप के, भूल न पापी मगर पाप के, ज्यादा नहीं दुकान चले, रामकृष्ण हरे रामकृष्ण हरे। अब की बार ओ जग के पालन हारे, लता दीदी के आवाज में।

पूज्यक के पालनहारे के बाद ओ पालनहारे निर्गुण और नियारे वंस अगेन लता दीदी के मीठी आवाज में ये भजन आप सुनेंगे। धर्म कर्म फाहौल हिंदुस्तानी के सुबह के भजन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। अगर आप ये भजन कार्यक्रम स्पॉन्सर करना चाहते हो तो तार कीजिए 0 से 5 2 3 4 0 पर।

ओ पालनहारे फिल्मी भजन अभी आप सुन रहे थे धर्म करम फाउंडेशन रेडियो के सुबह के भजन के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं।

APK Happy Station Far Horn Hindustani Radio. काम जो आपको रेडियो पर सर कराना है कॉन्टैक्ट कीजिए फार हॉर्न हिंदुस्तानी रेडियो से. हे अपना बनाने की कसम खाई है मिस्टर सानू एंड अनुराधा पौडवाल दोनों के आवाज़ों में आप गीत को सुनेंगे.

फिल्म सजक का सॉन्ग तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। संजय दत्त और पूजा भट्ट फिल्म में काम किया। संजय दत्त दोस्तों बीते हुए दिनों में ये आदमी जेल यात्रा, इसे मैं अच्छा कहा जेल यात्रा या जेल कातिल कोई बात नहीं, ये जेल गया और ये फिर वापन खफालक था। तो कई महीना ये जेल, लगभग 8 महीना ये जेल काटा। लेकिन उन दिनों में सलमान खान इनका बहुत मदद किया, संजय दत्त का मदद उन दिनों में सलमान खान बहुत किया। अब की बार धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना मिस्टर सानू वंस अगेन, लेकिन अब की बार नहीं नहीं एक बार फिर अनुराधा पौडवाल के साथ धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना।

रुलाना हर किसी को आता है, रुलाना हर किसी को आता है और हंसाना भी हर किसी को आता है, मगर रुला के जो मना ले, रुला के जो मना ले वो बाप होता है, और रुला के जो खुद रो पड़े वो सिर्फ माँ होता है। बड़ी उदास है जिंदगी, कोई साथी चाहिए।

उदास है जिंदगी, कोई साथी चाहिए। साथी किस तरह से मिलेगा दोस्तों? हम लोग के तो हिंदुस्तानी लोग को यहाँ पर रईस बिरो है, फ्लेश वेंकल है, तरकारी दुकान है, कपड़ा दुकान है, लेकिन हीलक्स बिरो मुझे पता नहीं है या नहीं। अगर होगा दोस्तों तो आप फाहन हिंदुस्तानी से कॉन्टैक्ट करके और प्रचार कीजिए, ये हीलक्स बिरो के जरिए साथी ज़रूर मिल जाएगा आपके करीब। आपके करीब हम रहते हैं।

रोमांटिक सॉन्ग साजन की बाहों में से मैं निकाल कर आपके लिए पेश किया था। सो ऋषि कपूर एंड टब्बू इस फिल्म में काम किया। कभी ये चांद सितारे जमीन पर रहते हैं। आपको मालूम है कि ये जमीन पर कितने चांद सितारे रहते हैं? अगर मालूम नहीं दोस्तों तो खोज कीजिए, यकीन कीजिए, देख लीजिए तो आपको चांद सितारे जरूर नजर आएगा। जिंदगी को प्यार बिना

दुनिया जो हमने बनाई है, ये जिंदगी बड़े जतन से कमाई है। इसमें रफ्तार तो भरपूर है, इसमें रफ्तार तो भरपूर है, पर ना ठहराव ना गहराई है।

वास्तव में जब दिल लेना है तो दिल फिर देना पड़ेगा। ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। बात में सोचता हूँ कि ये सही होगे, लेकिन जो गीत मैं पेश करूँगा वो है ये आंखें है आईना मेरी जिंदगी का।

कोई मेरे दिल में है, मुझे तो ये एहसास नहीं होता है कि आपको एहसास है कि कोई आपका दिल में है। मैं सोचता हूँ अगर होगे तो आपको जरूर एहसास होगे। कोई मेरे दिल में है, अनुराधा पौडवाल एंड मिस्टर सन।

koyse aşkıma var vasata. तब से कहा तुझको था इश्क लैला, बोला झुंझला के मेरी लैला है महबूब खुदा, ना बातें ही जबां पर यही रो रो के कहा मोरा मन हम सब

जिंदगियां खातिर सभी को देखता मुझको ये शर्मी आई के शर्मा के अपनी।

आप ही का हैप्पी स्टेशन 5 हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। काम जो आपको रेडियो के सिरे कराना है, कांटेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 7 5 2 8 4 0 या 9 7 3 7 2 0 0 पर आप तार कीजिए। तार का नंबर मैं दोहराता हूँ, अपन अखेंडा में लिख कर रख लीजिए आज नहीं तो कल के लिए 9 7 5 2 8 4 0 या 9 7 3 7 2 0 0। तार का नंबर है शान। दोस्तों शान एक गायक है, लेकिन शान को एक बैंड एक ग्रुप भी है, एक म्यूजिक ग्रुप है दोस्तों, और उसी म्यूजिक ग्रुप के आवाज़ में आप म्यूजिक सुनेंगे और शान के गला से आप ये गीत को सुनेंगे।

शान मिस्टर शान की मीठी आवाज में अभी आपने सॉन्ग को सुना, फावन हिंसानी दुबाप चुन है दोस्तों उदित नारायण। उदित नारायण आपको फरमाएंगे कि हवाओं ने ये कहा, और जैसे आप सभी को मालूम है कि हवा भी आवाज़ देता है दोस्तों, लेकिन कहता है हवा तो मुझे मालूम नहीं है। आशा रखता हूँ कि आपको ये गीत सुनकर पता लग जाएगा कि हवा कहता है और हवा ने क्या कहा आपको खुद मालूम हो जाएगा। आप खुद सुनिए दिल और जान से।

उदित नारायण पद्मश्री। उदित नारायण के मीठे आवाज में भी आप ये गीत को सुना। दोस्तों, जानू मेरी जान, तू मेरा मैं तेरे, या तू मेरी मैं तेरा, जाने सारा हॉलांत। दोस्तों, ये फिल्म शान का सॉन्ग है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन काम किया है परवीन बाबी के साथ। आप सभी को मालूम है कि दोनों में प्यार मोहब्बत था, फिर भी परवीन बाबी जो है वो डिप्रेसिव हो गया था, और जब डिप्रेसिव हुआ तब कई लोग के बारे में अनबन कहा, और कहा कि भारत की सरकार जो है उन्हें भी फॉर द रेक्टर एग्जाम किया था, उसका मूड खराब हो गया था। सो लेकिन उसी समय पे एक पार्टी पे परवीन बाबी ने गया, और अमिताभ बच्चन उसी समय पर सुपरस्टार चुना गया। तो परवीन बाबी से सवाल किया गया कि आप क्या ये बात से सही है कि अमिताभ बच्चन सुपरस्टार चुना गया? तो परवीन बाबी ने कहा, अमिताभ बच्चन एक सुपरस्टार नहीं है, सुपरस्टार का पद अगर देना है तो धर्मेंद्र को दीजिए, देवानंद को दीजिए, ऋषि कपूर वगैरह का नाम लिया तो उसके तीख ना प्यार मोहब्बत अब नहीं था, और डिप्रेसिव हो गया था। ठीक से देखा जाए तो उसको आप भी नाराजी नहीं मान सकते, इस बात पर कोलक नहीं ले सकते हैं, वो नहीं जानते थे वो क्या कहते। फिर भी जो इसके दिल में आया वो कहा, जानू मेरी जान। ये दोनों लॉफर्स दोस्तों, परवीन बाबू बाबी और साथ ही साथ अमिताभ, दोनों का फिल्म शान का सॉन्ग।

प्रेमी अमिताभ बच्चन परवीन बाबी का फिल्म शान का सॉन्ग भी आपने प्रोग्राम में सुना। उदित नारायण एक बार फिर प्रोग्राम में, लेकिन उदित नारायण के साथ रहेगा विनोद राठौर और साथ ही साथ अलका याग्निक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक पर। और ये गीत आनंद बख्शी ने लिखा है। दोस्तों आप जानते हैं, एक गीत जब तैयार होता है तो गीत का लिखार कोई होता है, जो लिखता है गीत को स्क्राइफर, वो भी एक कलाकार है, लेकिन लोग उसका नाम नहीं लेते हैं। जब एक गीत नहीं लिखा जाता तो उदित नारायण अलका वगैरह वगैरह लोग गीत कैसे गाते, तो एक स्क्राइफर का तालीफ भी किया जाहिर किए करने को, इसलिए कि एक स्क्राइफर जो है वो बैठ कर दिन रात सोचते हैं क्या लिखूँ और जाकर गीत बनाते हैं। और एक गायक गीत को गा लेता है, बढ़िया आवाज़ है तो गा लेता है। फिर भी आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत है तेरे बिना दिल।

बिन दिल लगता नहीं मेरी जान, वाह वाह क्या बात है दोस्तों। अगर दिल लगाना है तो एक जगह पर दिल लगा लीजिए, दो जगह दिल लगाएंगे तो आगे चलकर पछताना पड़ेगा। आदमी है जो चार जगह दिल लगाता है वो भी होता है, हो सकता है भी। दोस्तों राजकुमार एक एक्टर था, जब वो कुछ कहते थे तो लोग ध्यान से सुनते थे कि अब क्या बोली। तो फिल्म मॉडल इंडिया जब बना, बहुत पॉपुलर हो गया राजकुमार, उसके बाद चारों बगल से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट आने लगा। तो एक रात एक शाम की बात है, जब वो अपने दोस्त प्रकाश अरोरा और उनके पत्नी के साथ इवनिंग ड्राइव पर निकले थे। इस दौरान वो एक पान स्टोर पे रुके, उसी समय वहाँ कुछ लोग आए, और जब वहाँ पर लोग आए तो राजकुमार को परेशान करने लगे। कुछ देर तो राजकुमार बर्दाश्त करते करते रह गए, फिर भी जब बात उन्हें सहन शक्ति से भर गए तो उन्हीं ने बात या पलट कर जवाब देने लगा। आप जानते हैं राजकुमार का मुंह जो है वैसे सबसे मोच कफाला, तो वो जवाब देने लगा, फिर लड़ाई हुई। लड़ाई का शुरुआत हो गया दोस्तों, और एक शख्स ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दुख के बात है दोस्तों, लड़ाई के समय और किसी ने नहीं देखा कि वो शख्स जो मर गया उन्हें किसी ने मारा, राजकुमार ने मारा या उसके दोस्तों ने, लेकिन वो शख्स दुनिया को छोड़ चले गए। और एक साल तक मामला चलता रहा, राजकुमार का प्रॉब्लम था एक साल तक, और काम नहीं कर सकता था। फिर भी ये बात जज के सामने पेश किया गया और राजकुमार को फ्री हो गया। राजकुमार को कहा गया कि आपने एक काम नहीं किया, फ्री हो गया। मैं नहीं जानता राजकुमार किया या नहीं किया, फर्दाख्त था। और आप जानते हैं फिर भी उन दिनों के बात है या इन दिनों के बात है, जो लोग पॉपुलर होते थे तो उन्हें बहुत कम सज़ा भी मिलते थे। तो उसके बाद राजकुमार को यहाँ वहाँ से फिर कॉन्ट्रैक्ट मिलने के शुरुआत हो गया। आप जानते हैं 3 जुलाई 1969 तक के बात है, जब राजकुमार का मृत्यु हो गया था मुंबई में। तो फिल्म हमराज का सॉन्ग है, राजकुमार और सिमी दोनों के आवाज, दोनों फिल्म में काम किया, और ये गीत महेंद्र कपूर, पद्मश्री महेंद्र कपूर के आवाज़ में

नीले गगन के तले धरती पर पाँव पड़े राजकुमार के बारे में मैंने कहा भी दोस्तों, और अब की बार एक सॉन्ग मैं तैयार करके रखा हूँ, फिल्म चलते चलते का सॉन्ग है, अभिजीत एंड अलका दोनों के मीठी आवाज़ में आप सुनेंगे शाहरुख खान एंड रानी मुखर्जी का फिल्म चलते चलते का सॉन्ग।

तौबा ये नसारे, तौबे नसार के बाद लाखों है यहाँ दिलवाले, फिर प्यार नहीं मिलता। कैसा बात है दोस्तों, लाखों है दिलवाले फिर प्यार नहीं मिलता। हाथ में फूल ले लो, देखो कैसे प्यार मिल जाएगा। फिल्म किस्मत का शौक है, विश्वजीत बबीता फिल्म में काम किया दोस्तों। विश्वजीत एक न सिर्फ एक एक्टर था, लेकिन अभी तो जियत है, मैंने कहा उनका एक्ट के समय पर, न सिर्फ एक एक्टर था लेकिन एक प्लेबैक सिंगर था दोस्तों। कई गाना वो गाए हैं, हॉलैंड देश में शो दिया है, सूरीनाम में भी शो दिया है। तो विश्वजीत का फिल्म किस्मत का सॉन्ग है, जो निकटिंग आख्तन शास्त्र में फिल्म जो रिलीज हुआ, और महेंद्र कपूर पद्मश्री महेंद्र कपूर के आवाज़ में आप सुनेंगे, लाखों है यहाँ दिलवाले फिर प्यार नहीं मिलता।

डुएट सॉन्ग का बात जब हुआ दोस्तों, तो कुमार सानू आलका के साथ सबसे ज़्यादा डुएट पेश किया है या गाए है, और सभी डुएट में से एक डुएट है आज पहली बार दिल के बात की है। एल्बम तड़ी पार का सॉन्ग है और हम सब मिलके सुनेंगे फिल्म तड़ी पार का सॉन्ग आज दिल के बात। आज पहली बार दिल के बात की है।

दो घड़ी के वास्ते हैरत में खो जाता है वो, खुदा जाने एकाएक नरम हो जाता है वो। इस संभल कर बोला है नादान, तुझको खौफ क्या, उस बयानी से तू क्या पढ़ती थी मुझको भी बता। भाई के अंदर पर बोली।

दीदार में उसल करके हो के तायर पहुँच के जब हजरत के पास हम जली साने मोहम्मद को हुआ पैदा हिरात खौफ था सबको न पहुँचाए मोहम्मद को जरर सब गए शमशीर पर हर एक ने डाली नजर आपने फरमाया हंस कर आओ ऐ भाई उमर हर तरह तैयार हूँ मेरी जरूरत हो अगर गोसा देकर पाए हजरत को उमर ने ये कहा मैं मुसलमान होने आया।

ने कलमा पढ़ लिया, खौफ था पे दीन से जितना वो सारा मिल गया। बोले फिर हजरत उमर दीजे रजाया आवाज से, आज ही आगाह हो जाए हर किसान से, कुछ चिकन है आज से इस्लाम का हमें उमर, आज से है खास पैगंबर का पैगामी उमर। मोहम्मद मुस्तफा के नाम में बाला वो पत्थर है अंजुम मर्तबा इस्लाम का, इससे एक मौजूद नुमा

नबी आए गए लेकिन वही रंगत है मिल्लत की, सखी लाखों उठे लेकिन वही शौकत है दौलत की, मिटे जमशेद इस्कंदर वही हालत हुकूमत की, सितम टूटा

वही लोगों की शिरकत है, वही तर्ज अदालत है, वही रंगे मोहब्बत है, वही अगली जिहालत है, वही हरदम की सोबत है, वही इल्मो लियाकत है, वही त...

सुंदर सा हनुमान चालीसा आपके लिए पेश किया गया है मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये भी इतनी फास्ट, इतनी चटक जो आप सुनते ही और इसे पसंद करने लगे होंगे। कुछ भी हो जाए मेरे दोस्त, क्यों कुछ भी हो जाए, जैसे भी विपरीत परिस्थितियां हो, तुम हारना नहीं, और याद रखना तुम्हारा काम

ये सुंदर से बात है एक दादा दादी और एक पोता के। दादी बोली, आंगन में मोर पंख मिला है। दादी बोली कि आंगन में मोर पंख मिला है, तो दादा बोला, जरूर मोर आया होगा। पर पोता बोला, हो सकता है कि कृष्ण जी आया होगा। ये दादा दादी और पोता का विचार है एक मोर पंख पर जो आंगन में मिला।

शकी और कुमार शानू जी की आवाज़ में ये सुंदर सा गीत, हाँ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग और नए सॉन्ग जो रिलीज किया गया है, पेश किया गया है आपके वास्ते। हम वो पीढ़ी है, हम वो पीढ़ी है जिसकी ना हंसी असली है ना खुशी, जिसके ना ख्वाब पूरे हुए और ना ख्वाहिशें। हम अंदर से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं पर किसी को एहसास तक नहीं होते हैं। हम अपनी हंसी से अपने दर्द और तकलीफ छुपा लेते हैं। हमें तजुर्बे हमारी उम्र से भी ज़्यादा है, हम अपने अंदर कई जंग लड़ रहे हैं, इसलिए हमें समझना आसान नहीं है।

सुंदर सा गीत मेरे प्यारे सुनने वालों की, भुलान नहीं देना जी, भुलान नहीं देना, आप वाकई में भुलान नहीं देना, क्योंकि यहाँ से बैठ के मैं आपके सेवा कर रही हूँ ये आशा उम्मीद के साथ कि आप जरूर से उस पार बैठकर और सुन रहे हैं, लुफ्त उठा रहे हैं, यही आशा उम्मीद है कि आप जहां भी हो, जैसे भी हो, जरूर से खुशहाल में होंगे। जैसे भी परिस्थितियां हो मेरे प्यारे सुनने वालों, उसमें जरूर से खुशियां ढूंढो, खुशियां ढूंढो, खुशी से मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आएगा और जो गम है ना वो दूर हट जाएगा। गम भी डर के भाग जाएगा, ये सोचेंगे कि यहाँ पे मेरा क्या काम है, तो हंसो मुस्कुराओ,

गणपति बापा डीजे रिमिक्स आपके लिए, डीजे रिमिक्स आपके लिए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ये दिन आपको, ये पल आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। कहते हैं कि जब जब एक बेटी जन्म लेती है तो वो केवल एक परिवार में नहीं, जब बेटी जन्म लेती है तो वो केवल एक परिवार में नया जीवन ही नहीं लाती, बल्कि अपने साथ ईश्वर की असीम कृपा, रहमत और बरकत भी लेकर आती है। उसकी किलकारियों से घर का आंगन महक उठता है, उसके मासूम कदमों से आशीर्वाद का प्रभाव होता है। बेटी केवल माता पिता की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि उनके दुआओं का फल और उनके जीवन के सबसे सुंदर पूजनीय होती है। जिस घर में बेटी होती है वहाँ प्यार, अपनापन और सुकून का उजाला कभी कम नहीं होता। सच ही कहा गया है बेटी बोझ नहीं, बल्कि भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार होता है।

रफ़ी जी के ये सुंदर दर्द भरी गीत भी आज के प्रोग्राम में शामिल किया गया है। ज़रूर से आपको यहाँ से चुने हुए गीत पसंद आते होंगे।

very beautiful song of Rafiji. कहते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है. हाँ दोस्त, कि जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है. ऐसा नहीं लड़ना कि कोई के हादसा पहुंचाना, नहीं, बल्कि जिंदगी अपना कुछ बनने के लिए लड़ना पड़ता है. और आसान करने के लिए समझना पड़ता है. वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो. अगर कुछ अलग करना है तो ए दोस्त, अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो. भीड़ साहस तो देती है, भीड़ में चलोगे तो साहस तो देती है, पर पहचान जो आपका है ना, वो छीन लेता.

हिम्मत मत हारो और ना ही घबराओ, ना ही रुको, क्योंकि पहाड़ से एक उपमा है, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियां ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा समंदर कितना दूर है। यहां से आपको लेकर चलते हैं सुनने के लिए ये गीत।

आपकी कसम फिल्म का नाम भी आपकी कसम। कहते हैं कि एक वर्तराव ऑफ मेन टेम्पो, एक वर्तराव ऑफ मेन टेम्पो, अनकॉर्ट पॉज फन ट्वे मिनटन फर होग आल ये प्रोडक्टिविटेट। यू हुफ नीट स्नेलर, यू हुफ अलेन ये सेल्फ द सेन।

वही फिल्म फिल्म आपकी कसम से निकाल देगा, निकाला गया है। वो फिल्म में अपना कला दिखाई है राजेश खन्ना जी और मुमताज। सुंदर सा गीत सुनो सुना। इस बार आपके लिए है सर जो तेरा चकराए। उससे पहले ये संदेशा है आपके लिए, वारोम इस वांदलन ओक आलवेर खुद फॉर यू फॉर इधर थ्रोन्स ओक फॉर मई। वारोम इस वांदलन ओक आलवेर खुद Door slechts 20 minuten per dag te wandelen kun je cortisolniveau verlagen. En de aanmaak van serotonine verhogen. Met als gevolg een betere stemming, grotere concentratievermogen en meer emotionele weerbaarheid. Wandelen stimuleert de doorbloeding naar je hersenen en verbetert je energiebalans, waardoor je extra fris, gemotiveerd en emotioneel in evenwicht gaat voelen.

0: बुर्ज खलीफा देखे के है।
1: पागल है का मोचाए की बहुत पैसा लगत है?
0: बहुत पैसा है हमारे पास।
1: कितना पैसा रखी हो?
0: जोड़स 50 रुपया मैं बाबा बिताई दी रही, 20 रुपया मामा।

भाइयों ने अरे जम्फरों ने मार डाला है। तेरी दिवाली की खातिर मेरा निकला दिवाला है। मैं कड़का हूँ

0: जाती है।
1: बसें भी शहर में चलती हैं।
0: तो चलने तो क्या हुआ,
1: बसें भी।

कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, उबल जाता हो चाहे दूध चाहे रोटी जलती हो। पहन कर रेशमी सा अरे मोरी सा हमोरी हमोरी सा नखरबाली नखरबाली सुन ले मोरी सा सारे गामा पाधानी सा सानी धापा मागारे साड़ी साड़ी तू है निपट अनारी पहने लेछमी छाली पहन कर रेशमी साड़ी ऐसे चलती हो तुम ऐसे चलती हो तुम ऐसे ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए,

0: शू बीजू ना जाके कह जे हाथ मालू शू
1: दबा के मुंह में सिगरेट आप ऐसे ऐसे चलते हैं
0: है?

0: भांडू नका मेरे पास दाम नहीं है, मेरे पास दाम नहीं है, मेरे पास दाम नहीं। ओह
1: कमे सेक्सी लिटिल फिल्म अधिकार से यहाँ से सुने हैं किशोर दाजी की आवाज में कि कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है तो संभल कर और संभाल कर खर्च करना चाहिए, है ना।
2: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling Sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: गीत आपके लिए चुनकर लाई हूँ और गीत का बोल है बाप नंबरी तो बेटा दस नंबरी।

वही टाइटल सॉन्ग जो हमने सुने, बस बाप नंबरी तो बेटा दस नंबरी, जैसे बाप करेगा वैसा बेटा दो कदम आगे ही बढ़ते ही रहेगा।

0: झूठ बोले कौआ काटे।
1: ताई हम झूठ क्या बोल रहे हैं?
0: काले कौवे से डरियो। सुबह तो बुलाए थे
1: उसे, आप कौन सा मायके जाएंगे?
0: तुम्हें भेज देंगे माइक।
2: दूध लाइन में दाना छकाए दाना बोला थी पटर पटर, तो लागा थे कि तो आज दूसर ब्याह करा दे मैं। हाँ पहली बार 1000 रुपया मांग लिया थी तो तुम्हारे लड़का क्या पोंख ढील हुई जात है, दूसर ब्याह करी है गाड़ मदम है। एक कर लिया चाहे मोरी कैची तो 4 कर लिया, लेकिन मौका खर्चा बराबर मिला चाहिए, न सकल के न सूरत के न कोनो काम के न धाम के, 4 ब्याह करी है बेचारे।

0: तलवार तलवार तो मैंने आज तक नहीं चलाई।
1: काम तो सारे यूं करना हम जैसे करते हैं।
0: सब छोड़ो भैया,

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से आप ये सभी सुन रहे हैं जो आपके लिए खोज कर और पेश किया जाता है, कुछ अलग सा तो कुछ भी अलग महसूस होता है ना। मुकेश जी की आवाज़ में फिल्म का नाम ठोकर।

खाना नहीं बन पाएगा। हम आपको लेकर चलते हैं फिल्म झूली की ओर। फिल्म झूली की ओर आपके सुनाएगा किशोर दाजी की दिल क्या करे।

0: सुना लागे रज का धाम, गोकुल को छोड़ चले रे घनश्याम।
1: Fastnet staat voor je klaar met een snelle...
2: रफी जी के आवाज में हमने श्रवण की है ये सुंदर ये मधुर भरी गीत आवाज में कि सुना सुना लागे बिरज का धाम। जब कन्हैया जी बिरज ग्वाल को ब्रज धाम को छोड़कर जा रहे थे तो गोकुल गोपिया ये सब गीत बिरह के सुनाई, और ये खास तौर पर आप ही का मनपसंद गीत जो आपने गुजारिश की यहाँ से हमने आपके लिए पेश कर दी है।

का चांद, ये सुंदर सा मैश अप हमको सुना दी है फारिस बरसाती जी। भगवान के पास दो शक्तियां हैं, भगवान के पास तो अन्य शक्ति है, पर यह हम दो शक्तियां के बारे में बात कर रहे हैं कि भगवान के पास दो शक्तियां हैं, दोनों भगवान की है, एक है माया और दूसरी है भक्ति। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है और भगवान को प्रणाम करता है तो वो पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, माया चाहिए या भक्ति। भक्त पूछता है, महाराज दोनों में अंतर क्या है। भगवान बोले देखो दोनों में एक ही अंतर है, अगर तुम्हें नाचना हो तो माया ले जाओ, और अगर मुझे नचाना है तो भक्ति ले जाओ। क्योंकि जीव जिसके वश में रहे उसका नाम माया है, भगवान जिसके वश में हो जाए उसका नाम भक्ति है। भक्ति के राज्य में तो भगवान नृत्य करते हैं, और भगवान के राज्य में समस्त संसार नाचता है, जबकि भक्ति के राज्य में भगवान नाचते हैं।

मन में हमको सुना दी है, हम जरा देख ले तो। सलीम रजा, सलीम रजा के आवाज़ में यहाँ से हमने श्रवण की है। मेरे प्यारे सुनने वालों, आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से फ्रेंडशिप इज हेल बिसोंदर एंड स्पेशल, फ्रेंडशिप इज हेल बिसोंदर एंड स्पेशल, kopen kun je het echter niet, maar de juiste personen zullen er zijn. Ja, maar de juiste personen zullen er zijn in tijden van vreugde, maar ook bij verdriet. Zelfs je ernstig

रफी के गाए हुआ गीत हम सुने इस बार राकेश यांगकरन जी के आवाज में, कि सुना सुना लागे बिरज का धाम। धन से पुस्तक मिलते हैं, धन से पुस्तक मिलती है किंतु ज्ञान नहीं। धन से आभूषण मिलती है किंतु रूप नहीं। आभूषण यानी कि पहनने वाले चीज, अपने शरीर को सिंगार करने वाला चीज आभूषण कहते हैं। कि धन से आभूषण मिलते हैं किंतु रूप नहीं। धन से सुख मिलता है किंतु आनंद नहीं। धन से शांति मिलती है किंतु सच्चे मित्र नहीं। धन से भोजन मिलता है किंतु भूख नहीं। धन से दवा मिलती है, धन से दवा मिलती है किंतु खुशहाल नहीं, स्वच्छ नहीं मिलती। धन से एकांत मिलता है किंतु शांति नहीं मिलती। धन से बिस्तर, हाँ हाँ बिस्तर मिलता है, बिस्तर यानी कि बेड। धन से बिस्तर मिलता है किंतु नींद नहीं मिलती।

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: तो लीजिए अगला गीत हम चल आपको आपको सुनाने वाले हैं, क्या ख्याल है ये, इस तरह से फिल्म आओ प्यार करें।

लता जी की इस गाने पर मुझे कुछ नहीं कहना है। जी हाँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा और चलाऊँगा ये गीत। फिल्म ये रात फिर ना आएगी, निकिता सेसन को 1966 का ये गीत। जी हाँ, सुनिए महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में।

मेरा प्यार वो है महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में अपनी सब इच्छाएं उन्होंने रख दी। फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी नीगती सशस्त्र 1966 का ये गीत ओपेन नैयर के साज पर हमने पेश किए। लीजिए प्लेयर में एक गीत हमने और रखे है मैथी मुकेश जी का, पता नहीं बहुत दिन हुए होंगे आप ये गीत शायद सुने हैं, मैं भी बहुत दिनों बाद ये गीत चला रहा हूँ, ये भी हो सकता है आपने हाल ही में सुने होंगे, तो मेरा बदनसीबी है, वरना लीजिए मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुना रहा है।

मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस अगर सैड सॉन्ग हो तो मुकेश जी तो गम का दरिया है, और ये गीत हम आपको सुनाएं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। फिल्म अप्रैल फुल में से नहीं गई फिर ऐसे 1964 का ये गीत लता दी शंकर जयकिशन के साथ।

ट्यून है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। तो चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, अब वो ये है, कभी कभी आप कहीं जलसे में जाते हैं यानी न्योता में जाते हैं, कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो, को शुशु शुशु बात करता है यानी छुपके छुपा के, तो इसके बारे में भी बॉलीवुड ने गीत बनाए हैं। चलिए वही गीत हम आपको सुनाते हैं। आशा जी आपको सुना रही है कि लोग कभी कभी शुशु शुशु करते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं, कानों में बात करते हैं, खुल के बात नहीं करते हैं, जिसे कहते हैं काना फुसकी।

0: 小声说，
1: 小声。

धीरे धीरे बोलो जी, नाचते नाचते आप शायद थक गए होंगे। जी हाँ, मुमकिन है थक गए होंगे, तो लीजिए मैं आपको थोड़ी देर आराम देता हूँ।

हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर ये गीत पेश हुआ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। हमने पेश की मैथ्यू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी फिल्म एक बेचारा में से निकाल कर निकली तुई सैफ का ये गीत। चलिए अगला गीत है और वो गीत है नतीजा हमारी मैथ्यू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। क्या ख्याल है?

ये तुम भी ना सोचो, ये हम भी ना सोचे, मैथ मुकेश और आशा जी मिलके आपको गीत ये सुनाए ओ फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये सुनाऊँ, इस तरह से आ रहा है।

छाई बरखा बहार आंगना फुहार निगती निग्न से स्थक आशा जी और जी लता आशा और लता मिल के गाए हैं फिल्म चिराग में से निकाल कर निगती निग्न से स्थक 1969 का ये गीत हमने पेश की मदन मोहन के साज पर। चलिए मदन मोहन जी के बाद हम पेश कर रहे शंकर जय किशन, क्या शंकर जय किशन इस तरह से।

0: ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओहो

0: बोलो बोलो।
1: आज लेना एक वादा है।
0: क्या?
1: आजा आजा, शादी का इरादा है।
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं
0: बाबा,
1: सुनो तो, नाना सुनो तो, सुनो तो। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

आप यहाँ आए किस लिए? वादे तो बहुत लिए, लेकिन करना पड़ेगा जरूर, तो अवश्य करेंगे। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, और ये गीत इस तरह से है।

आओ प्यार कर ले। जी हाँ, फिल्म सच्चा झूठा में से निकाले हैं आशा जी और साथी मिलके आपको सुनाएं निगती सैफ तक का ये गीत है। कल्याण जी आनंद जी के साथ पर गुलशन बावरा का लिखी हुई गीत हमने पेश की फाहन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम।

आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका हृदय से स्वागत करते हुए हम चला रहे हैं ये प्यारा गीत इस तरह से है।

भूले अफसाने फिर से याद आए, रफ़ी साहब की आवाज़ में पेश हुआ ये गीत हमने पेश किया आपके लिए। उम्मीद गीत आपको अवश्य अच्छा लगा होगा, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है बहुत दिन हुए ये गीत हमने चलाए थे, आज फिर याद हो गया, हमने सोचा फिर आपको सुना दूँ। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं और वो ये है बजरिया के बीच। बस सुनिए लता जी की हाहाकार।

मैं गले लग जाऊं बजरिया के बीच, हमने कहा लता मंगेशकर जी नहीं लेकिन आशा जी, आशा जी की आवाज़ में सुनाया गया फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में है। चलिए अगला गीत पेश करने वाले हैं और वो ये है, ये गीत दरअसल में यहाँ पर लिखा है कि इस एक्ट्रेस की आंखों को देखकर बहुत से बॉलीवुड वाले फिदा हो जाते थे, पता नहीं हाँ है या ना है, लेकिन सोचिए ये रायश्री है उस ज़माने की एक्ट्रेस 60s का। बाद में वो कहाँ चली गई, हाँ पता चला अमेरिका चली गई, लेकिन उसके बाद फिर कुछ नहीं पता चला इनके बारे में। रायश्री का ये फिल्म है और एक्टर इस वक्त मुझे मालूम नहीं है, शायद याद हो जाएगा बाद में मैं, लेकिन चलो वो गीत तो आपको सुनाते हैं जिनकी आंखों को देखकर बॉलीवुड वाले फिदा हो जाते थे।

तूने मोहब्बत से मेरा दिल भर दिया, रफ़ी साहेब को लता जी आपको सुनाएं। ये गीत हमने निकाले हैं आप ही के लिए, शुभकामना के साथ लीजिए। आप ही के लिए हम पेश कर रहे हैं ये गीत।

बन के पंछी गाए प्यार का तराना। लता जी और साथी मिल के आपको सुनाए ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं आपके लिए, ये एक बहुत पुरानी गीत है। जी हाँ, बहुत पुरानी गीत है, लेकिन इसे जितने बार भी सुना जाए लगता है हाल ही में रिकॉर्ड हुई है। तो आप सोच रहे होंगे कौन सा गीत है कि यही लगेगा कि ये गीत हाल ही में रिकॉर्ड हुआ है।

दिन हो या रात हम रहे तेरे साथ, रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर फिल्म मिस बॉम्बे में से निकाल कर हंसराज बहल के साज पर हमने पेश की आप ही के लिए। आप चुने फ़ोन हिंदुस्तानी रेडियो पर, आपका हृदय से स्वागत है। तो अगर जहाँ आप चुन ही हैं तो चलिए हम आपको मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस का ये गीत सुनाते हैं।

मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए दो होंठ हिले किसी ने मुझे ऐप की गंगा, ये गीत तो आप अभी चला चुके हैं। हाँ, बात थोड़ी सी सही है, दरअसल में वो भी लता जी की थी। जी हाँ, वो लता जी नहीं, वो भी मुकेश का था और धुन एक ही है लेकिन शब्द अलग है। वो था ऐ प्यार मुझे रो लेने दो और ये था दो होंठ हिले। मुकेश जी की आवाज़ में दोनों गीत गाए गए हैं मुकेश द्वारा, लेकिन शब्द अलग है, धुन वही है। तो यही बात है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन विभिन्न हेल खुल इस तरह हमके नाम आखिर तो नाम लेवे के बाकी तुरंत कान बहुत तेज है और दिमाग बहुत तेज है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत पेश करने वाले हैं और वो ये है, चलो सुनते हैं लता जी और सिर्फ लता जी है।

जी हाँ, लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाए ये शानदार गीत। और यहाँ तक मेरा ख्याल है यह फिल्म नौशेरवान आदिल का ये गीत हमने पेश किया है। इस तरह से आ रहा है ये शानदार गीत है।

0: मेरी आवाज़ के पीछे चले आओ, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत हमने पेश किए। जी हाँ, तो चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है, देखते हैं लता जी की आवाज़ में एक बार फिर।
1: शर्मा
0: नहीं रफ़ी,

फिल्म शहनाई निगतिन फिरें सस्तख का ये फिल्म है और हमने पेश की इस फिल्म में से ये गीत निकाल कर। तो हाँ, www.fm.nl पर आप चून हैं, जो लोग चून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आप हैं तो मैं हूँ, और जब आप नहीं होंगे तो फाउन हिंदुस्तानी भी नहीं रहेगा रेडियो, तो आप ही से हम सब हैं। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुने। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, वो ये है, इस तरह से।

सनसन सनासन सनन लता जी और साथ ही मोहम्मद रफ़ी के साथ ये गीत हम पेश किए ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, ये हैं उदित नारायण जी।

उन्नी नारायण जी की आवाज़ में हम ये गीत आपको सुनाएं, मेरे लिए तूने तुम्हें रब ने बनाया है, और शाम के कार्यक्रम में हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से

अरे वाह क्या बात है, एस डी बर्मन के साज पर फिल्म बम्बई का बाबू में से निकाल कर लता जी की आवाज़ में हम पेश किए ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत चलाने वाले हैं वो माइती मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस। सुनिए इस तरह से।

टाइटल सॉन्ग रफ़ी साहब की हम आपको सुनाए हैं और शंकर जय किशन के साज पर फिल्म प्यार ही प्यार में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, ये गीत आप सुनिए, बस इस तरह से आ रहा है श्याम जी, हाँ ये गीत।

मैति मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये शानदार गीत फॉन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने निकाले हैं नेघिनती नेघिन शस्त्र से 1969 से ये गीत। चलिए प्रोग्राम में हम पेश करते हैं क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊं। जी हाँ, एवरग्रीन किशोर कुमार फिल्म धर्मात्मा में से नेघिनती फेफ से इफ तक का ये गीत 1975 का ये गीत क्या ख्याल है। हाँ

एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुना है ये शानदार गीत निकिती फेविन से मित्र को 1975 का ये गीत फिल्म धर्मात्मा में से हमने निकाले हैं। चलिए आप भी हैं और मैं भी हूँ, मैं चला रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप सबका हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं इस तरह से।

रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनाया गया ये शानदार गीत काफ़ी प्रचलित था, अब भी है और शायद ऐसा रहेगा भी, यानी बहुत पॉपुलर था, है और पॉपुलर रहेगा। ये शानदार गीत हमने पेश की। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं राहत फ़तेह अली खान। जी हाँ, राहत फ़तेह अली खान आपको क्या सुना रहा है।

0: राहत फतेह अली खान जी और सुशांत जी मिलके फिल्म दे दना दन में से हमने निकाल कर आपको सुनाई है। चलिए विज्ञापन से पहले हम आपको ये गीत सुनाते हैं, क्या ख्याल है अगर जे ये हम आपको सुनाएंगे।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

0: वाह क्या बात है, लता जी की आवाज़ में आपने सुने ये शानदार गीत फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के www.faunfm.nl पर। आप चुने जो लोग चुन की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है और कार्यक्रम आप सुन रहे जहाँ भी होंगे जो भी कर रहे होंगे एक बार फिर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा आपको हृदय से स्वागत किया जा रहा है।
1: Geschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden

मधुमन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। फिल्म साजन बिन सुहागन निगतिन अख्तसेफिन तक येसुदास उषा खन्ना के साज पर हम आपको ये गीत सुनाए हैं। आप चुने फान हिंदुस्तानी रेडियो पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आप कार्यक्रम नज़दीक से बैठ कर सुन रहे हैं जहाँ तक मेरा ख्याल पता चला है, तो हम आपको ये सुनाते हैं इस तरह से।

आतिफ असलम आपको सुनाएं। ये शानदार गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए हमने ये गीत रखे हैं, क्या ख्याल है? आ रही है सलमा आगा जी। जी हाँ, सलमा आगा जी।

0: सलाम आगा, आपको सुनाए ये शानदार गीत और हमने पेश की कार्यक्रम में, आपको अवश्य अच्छा लगा होगा ये गीत। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है, चलो सुनते हैं ये गीत। हाँ
1: संगे

0: लता जी आपको सुनाए हंस परदेसी। और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग ऐप करते हैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं। जैसे अल्फानंद रैन के रहने वाला श्रीमान। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं। और क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये सुनाऊं
1: के आ गई रुत मस्तानी ओढ़ो

ढोल सजना ढोल जानी रफ़ी साहब और लता जी मिलके आपको सुनाए हैं, ये कार्यक्रम में हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है? चलो सुनते हैं कि राहत फ़तेह अली खान जी, जी हाँ, अपने झड़कने वाले जिया के बारे में क्या कह रहा है। चलो सुनते हैं, बहुत दिन हुए हम भी नहीं सुने कि धड़कते हुए दिल कैसा होता है। राहत फ़तेह अली खान जी।

जिया धड़क धड़क जाए। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। क्या देखते हैं शारदा जी, राहत फतेह अली खान के धड़कने वाला दिल को राहत दे सकती है। चलो सुनते हैं।

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: तो आज हम आप लोग को कुछ एक घंटा बॉलीवुड सॉन्ग सुनाएंगा और जाने अगर ये आप नाचना चाहते हो तो झूमिए और नाचिए। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं।

और तेरे लिए और रीमिक सॉन्ग, और आज हम आपको सुनाएंगे और रीमिक सॉन्ग के बाद हम चलते हैं कुछ ओल्ड एंड गोल्ड रीमिक्स भी हम आप लोग के लिए, और लाइए गुनगुनाइए झूमिए। ये फूल है

दीवाना और दीवानी, दीवानी में क्या क्या हो जाता है यारो। और उसके बाद हम चलती है सैटरडे नाइट की और रेमिक्स बॉलीवुड डीजे जंग।

एंडोस्टो आज ओनली रीमेक सॉन्ग हम आप लोग को लेकर चलते हैं 1990 के एंड 2022 का।

yum, हम चाहती है नहीं खंडी तख्त का रीमेक सॉन्ग। कहाँ है आ जाना।

आँचे माप लो को ले चलेंगे पुराने यादे की ओर। और लीचेस नामलेक दी फन यार 1974 इन सुरीनाम द हिट सॉन्ग्स वास। आओ सुना जाए ये कौन सा गीत है जो आप लोग शायद बहुत दिन हो गया होगा नहीं सुने होंगे, तो आप यहां से सुन सकते हैं। दिस इज लीफो ही हो।

अतराफ असी तो दोस्तों आंच हम आप लोग को उस समय पे जाते हैं जो उन समय पे ये सब सूरीनाम में बहुत हिट सॉन्ग थे दोस्तों। और उसके बाद हम

और कितना दिन पे इस गीत को हमने सुना है कि मेरी पुछली चिरैया और दुल्हवा लिए जाए और मैना बोल रे हम चलते हैं सुखी अकल के ओरे।

और सुखी अक्ल के आंच में हम सब इस गीत को कितनी दिन बाद सुना है दोस्त, तो एक और हो जाए और वो है रोमियो बोली नानी, भोली नानी, पुराना गीत है।

और नानी से और कह रहे है रोमियो डोंक बोले है ना गुस्से ये नानी रोमियो डोंक द ईगल कोलैप्सो कासिको।

और बुध राम होलास दोस्तों, और थार गोरी और क्या क्या गाए हैं, ये एक चटनी जोंग है दोस्तों, चटनी जोंग। तो आज कुछ चटनी हम आप लोग को सुनाएंगे, आओ एक और सुना जाए, हरि सुखदियो के ड्रिंकिंग वाइड बाड़, और एक सुखा चटनी है दोस्तों।

और ड्रिंकिंग टू बार दोस्तों कुछ सोकान चटनी आप लोग को हम सुनाते हैं और सुनाते ही रहेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं केनेट सालिक की ओर, ये भी एक सोकान चटनी आप लोग को सुनाएंगे।

खा मेरा रंगला और राम की सुन कविता, राम की सुन का ये गाया हुआ ये सॉन्ग है यारो। हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो क्या होगा, देवी नीहा सरस्वत राधे व्रजा, और क्या क्या नाम है इसमें दोस्तों, आओ सुना जाए ये क्या सुनाते हैं।

और दोस्तों आप लोग को कुछ फीजी का और कुछ और जोंग हम जूना दे है दोस्तों, लवली जोंग बजाना हमारा काम है, हमारा काम है लवली जोंग बजाना।

बलमा बलमा अगर जिंदगी हो तेरी रोमांटिक सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग के मूड में है। मूवी का नाम है झनकान फन नई खतक और बलमा नई खत नई खतक का आशा भोसले का सॉन्ग के बाद हम चलते हैं दिल लगी ना किया करो दिल लगी ना किया करो।

0: या करो एवरी ग्रीन एवरी ग्रीन। और दोस्तों सॉन्ग लवली सॉन्ग, और हम चलते हैं अगला गीत के ओर। अगला गीत क्या होगा सुना जाए।
1: नहीं देखा कभी पहले,
0: और हम ही नहीं देखा कभी पहले।

और तेरा नाम में बसी है खुदा, दोस्तों दोस्तों दोस्तों। और कुछ क्रिस राम खिलावन के गीत भी आज हम सुनाएंगे।

0: और यहाँ हूँ दोस्तों क्रिस राम खरवान की आवाज में आप लोग सुना है और जितने हमारे लोकल उस्ताद है सबके नाम लेकर हमारे उस्ताद एक उस्ताद क्रिस राम खरवान आपकी सुनाए हैं। तो हम चलते हैं बैठ गाना रे बेक्स
1: इससे का मापर सो

दोस्तों और हमारा बैठक गाना के प्रोग्राम तो हम जोर तोर से चलाते हैं और एक हो जाए कृष्णराम खिलावन की जोंग।

फन हंड्रेड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

0: कला न जाने जा सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आजीरमा दे
1: मैं तेरी शायरी।
0: तमाम रेडियो फाहुन की सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरिए नाम सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश और विदेश का समाचार सुनाना है हमारा काम। यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। चुके हैं तो हमारे प्यारे प्यारे जनता, मीठा मीठा जनता, स्वीटी स्वीटी जनता, आज भी हम फेसबुक के माध्यम से लाइव है अपना प्रोग्राम में। और आज भी आप लोग को हम दुनिया की शेयर कराएंगे रेडियो फाहुन के माध्यम से और जाकर बांध में सूरीनाम के भी शेयर कराएंगे। तो हमारे नानी लोन, आजा लोन, आजी लोन, आप जहां भी हो बड़ों के प्रणाम, बच्चों के आशीर्वाद और दोस्तों के, हमारे दोस्तों के सलाम दुआ प्यार नमस्कार सब सब भैया। तो यहां से हम तुरंत चलते हैं और जाते हैं अपना देश सूरीनाम की ओर। और फेसबुक के माध्यम पे आ गया है इसरी, जाने के धर्मेंद्र इसरी आ गया है। तो आपको हम स्वागत करते हैं धर्मेंद्र। तो धर्मेंद्र बातचीत ये हो रहा है सूरीनाम के भैया दुई परानी बोले बड़ा प्रेम से रहतरा। बोलिए जॉनी झगड़वा हो गया? ना ना ना ना ना, ना ये दूसरा बातचीत है। दुई प्राणी के बातचीत हुए है, दुई प्राणी के सिपाही पकड़ी से, तो ये दोनों के देर तक यूली के पकड़ी से ऑफ डीलिंग जोन मा सीईई के एगो अक्टन ट्वेल तक यार के एफ एस एगो फैफन देर तक यार के, तो ये सब के कैसे पकड़ी से भैया क्यूबान के, क्यूबान के औरत रहा भैया, क्यूबान लोग के औरत लोग के समोकल करके लावत रहा देशवा में। तो लोग जानो है आदमी दृक स्मोकल करे है सौदा पानी स्मोकल करे, अब बतावे कितना तमाकू सब स्मोकल कैसे ये सब मेंस हैंडल करत रहा भैया। फरमुड लोग आइट बेटिंग फॉर फॉर नाम लगा क्यूबान से व्रावन एंड हेल मोये व्रावन और भाई मेंस हमार भैया लोन हुआ पे बनैया लोन है सूरीनाम में हमसे बोले है जॉनी बोले बड़ा सुंदर सुंदर क्यूबान के औरतियां है। तो वही के मारे तो एक के सबन क्यूबा के औरत लोग के स्मोकल करके लावे है। तो हम ना बोले ला तो लोग के जइयो देखिए यो मां हम बताए ला तोरिया कैसे है। तो यहां बड़ फ्रॉ फरक्लार दे बोले हैगा और जो उनके पकड़ी से ऑन द सुक हम खांग नादर फॉर मुड लक स्लाख्त ऑफर एगो क्यूबान के औरत स्लाख्त ऑफर हाथ गेल है बतावे है। बोले हैगा दैट से हर अन कम्स इन सूरीनाम बोले जैसे हम आइली बोले सबन हमार पासपोर्ट ले ले से पासपोर्ट ले ले से। तो ये पासपोर्ट ले ले से तो अब बोलिए कि अब तो अभी कहीं जा ही ना पाई ये पासपोर्ट तो वाले आएगे। तो इंदर दात में से अब एकर पासपोर्ट ले के एकर पासपोर्ट ले के और का करी से जाए के बैठा दे से भैया। हाँ बैठा दे से प्रतुस्तुई में नाना। हाँ जहाँ पे हमारे हमार बिरमान लोन जा है चकलस करे हुआ पे जाए के बैठा दे से और पासपोर्ट क्यूबान के छोड़ी के माई के और कस पासपोर्ट ले ले से और ले जाए के बोले अब चल तू अपन सेक्स वर्क के काम शुरू कर नाइट क्लब में। तो हमारा बहन अर्शिला भग्गू समुझ भी अलगमान से आकर हमारे प्रोग्राम में जुड़ गए हैं। तो आपको हम स्वागत करते हैं। तो यहाँ बताए गए है, बताए गए है कि पासपोर्ट लेके जाए के खदोंगन उन सेक्स वेरक्त फरिश्तन और ना खाली एगो फर्स्ट केलंद क्लब में ले आए ले जाए वहाँ पे और बदमाशी करत रहा। हाँ और बदमाशी करवावत रहा द नाश खाफ से आन द से मेर्दर फ्रोवन फन क्यूबांस ऑफ कॉम्स ऑफ द ओपन लोकास सीन कॉम अवे न मन हंसू में भैया ले जाए ले जाए औरत ये के धल्ले रहा कॉम अवे न में भाई स्मोकल कर कर बड़ी ढेर और कॉम अवे न में एगो रास्ता के नाम बात उर्सिला तू तो जानत हो यो कॉम अवे न के बांचित है एगो रास्ता के नाम बा माया माया दाम है हमें तो पता न है और ये कमोवैनक है हंसुक है आपको तो पता होगा कि माया दाम कमोवैन में कहाँ है तो कमोवैन में माया दाम में भैया हुआ पे ले जाए ले जाए औरतियन के जैसे महासैन में धरत रहा यहाँ पे और क्यूबा के औरत के मंगाई मंगाई और ले जाए ले जाए माया दाम में आम खवावत रहा का भैया और बताए गए है ऑफ कॉम्स्ट क्यूबा ऑन फॉर ना मुदलक फॉल्स फॉर वेन सेलन फॉर सुरीनाम ही व्लाद इन ओवर गोमन और बोले फॉर सेक्स वर्क मींस इन पासपोर्ट वर्ड इन कोनोमर आस अंडर पंत से अक्टर कहोदन वार्डोर से अफंकलिक ब्लीव फॉर द फरदाक्टन तो जो ने पासपोर्ट वाले ले तब तो अपू जोन बोली तो उन तो के करे के परिगा और मोई मोई बार बोल के चल तो के सरनाम में हम बकुआ खवाबे मोई मोई काम देबे और हिया लाई के एके और क्यूबा के औरत लोग के और लाए लाए हौसल करवावत रहा पासपोर्ट पासपोर्ट ले ले रहा तो लेडी सेफ बे से हमारा एक बहन और आ गया है चित्रा अवतार आपको बहुत प्यार से और स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में। तो ये बात हो चुका भैया तुम तो जानो है क्वेक क्वेक जाने जो सुनवा वाला चीज हुआ है तो क्वेक के बात है तो क्वेक के तरह चोरी भैला हो तो हम कई रोज से बोले ला बाकी सरमक्का के रीवा में भैया सरमक्का के रीवा में बेनालांग के रीवा में मछरी मर मर सब उतरान है इरमा राम तहल सिंह आपको हम स्वागत करते हैं मछरी सरिनाम में सरमक्का में और बेनालांग में मछरी मर मर सब उतरान है भाई फरखेफ भैले हुआ के पानी तो लांटी बोले है बोले तू लोग के रीवा के मछरी पकड़ के न चाहे खाई के और ना पानी चाहे पिए के बोले ऊपर खिफ्तक है तो अब अनमी लोग के बारा दुख है भैया जो अनमी बेनलांत में रहे हैं वो रीवा के पानी से बनावे खा है और मछली बनाई के खा है अपन जीवन चलावे है जब तो रीवा फर खिफ्तक हो गए है तो अनमी भला अपन जीवन कैसे जाई चलावे तो लांटी का बोले है शांति गुरुओं के दुर्पू में शर्मा का रिवीर में बोले हुआ पे शांति गुरुओं में ले जाए ले जाए अब उस सबके पकेता देवे भैया पकेता देवे है हिया बतावे है बोले सिचुवासी ही द सिचुवासी ही खलेत और मसाले फिस्टर्फ्ट एन ओंत रीखल्ट दाखल के लिए इन खतरों गमेंशाप के बांचित हो रहा है तो बताए गए हैगा कि अब ले जाए वो कैप्टन है जिसका नाम बा एथार प्लेन शांति ग्रोम के बोले हैगा दस बवून द हेल्प वार्डेरन वार देर करे हैं मां बोले फिर भी फुसर पर कहता हम लोग के लगे आवे है दौरस हो बोले है मां बोले हम लोग के बोले कैप्टन बोले हैगा पिकिंग पोइका के प्लेट फॉर फेयर हेल्प से स्टिल दैट द पकेन फील बतीकन फॉर द बमोज मार दैट द ऑफ वॉल्कन उसाकलिक ब्लेव सो लॉन्ग द रिवीर वाटर ऑन ब्रेक बार ब्लेव मेन से तो पानी के हुआ बड़ा प्रॉब्लम। अब देखो भैया बोले रही क्यूबा के औरत के इरमा क्यूबा के औरत के शर्मा में से बन स्मोकल करके लावे दिसुआ में पासपोर्ट लेके और ले जाए के नाक क्लब में प्रोटेस्टुई सेक्स वर्क के काम करवावे हैं तो यहाँ पे बताए गए हैं ना खाली क्यूबा के औरतियन के भैया सत्तरासो इलखाल तमाकू निकेरी में सबन स्मोकल करी जरे कोई कोका ही न स्मोकल करे है कोई भैया तमाकू हो स्मोकल करे कोई औरत स्मोकल करे है तो यहाँ अब तमाकू के बारी है सत्तरा सौ पाकी और जाए के स्मोकल भइल है ये बातचीत हुए वो जगह के नाम बा करापा हुक लान निकेरी के बातचीत है तो करापा हुक लान निकेरी में एगो बहुत बड़का पड़ताई तमाकू मिलल है और बोले एगो पचास बरिस के आदमी के सपन पकड़ ले से गा तमाकू के साथ में और ओके जबरदस्त बूटू मारी से और रमिया के भका भक चाहे तमाकू पिए के भैया जब तू तमाकू स्मोकल कर लेते तो कह चाहे तमाकू पिए के ये बात है सूरीनाम के हमारे प्यारे प्यारे जनता तो यहाँ पर बताए गए है पता है और हमारे उस्तादों के उस्ताद महा उस्ताद भैया सुंदर हीरा लौंडा के नाच बिरहा के नाच के गुरु भी हमारा प्रोग्राम में आकर और जुट गए हैं तो हमारा उस्ताद के हम यहाँ से हृदय से स्वागत करते हैं तो भैया हीरा जी बातचीत हुए भैया इतना रोफ हुए सूरीनाम में का बोली भाई और हमार हनीस मनोरथ बोले बोले चिजुअन बोले बड़ा मोई हुई के दसवा तू रिश्ता के बोला अब देखो भैया खवा पंद ऊपर फाल भैल बालकोन में रमिया बैठ के अपन ठंडा ठंडा हवा लेवतरा ठंडा ठंडा हवा लेवतरा एगो सीनियर बुरखर यहाँ और खुमोई से अपन घर में बालकोन में बैठ के हवा लेवतरा भैया ई सब बातचीत हुए है एगो रास्ता के नाम है मुरई स्ट्राट भैया खाए वाला मुरई जतियात करे तो जान जाइयो मुरई स्ट्राट के है ते बालकोन में अपन बैठ के खूब ठंडा ठंडा हवा लेवतरा और सोना के केती पहिर के भैया उतरे में दुई गो ना एगो दुई गो आदमी यंग ब्राउन फिश पे ओकर ब्राउन फिश पे रुकल है और ब्राउन फिश लेके रुकल है भैया और आई के बोले हैगा एगो बोले हैगा रेक्स ट्रेस ओकर बालकोन में घुसल है बिना एक को वार्स क्यूएं के निकारी से पिस्टोल भैया और ये बयारदम मन के 18 करात के सोना के केती गटई में से लेके चल गए हैं और फॉर्म फॉर 11 कॉप और हंगरवा रहा जैसे को बाघ के मूड़ी के तू जाने सबन हंगर बनाए रहे तो भगवा के मूड़ी के और फॉर फॉल्क तो रहन रहे तुरखना तो ब्रॉम्फिस तो दोस्तों कोई जमाना में बहुतर्स बोले रहा बोले हम बोले तिकुआ में बोले ये हम पर इसी डेंट होबे बड़कवा हो जाबे तब बोले जितना आदमी के घर में लोहा लगल है बोले लोहा ना हुफ्त लगावे इतना फैलक हो जाई दसवा मेरे भगवान घरवा में आदमी के आजकल अपन बालकोन में लगावे के परे ले भैया कि बालकोन में लोहा लगावे के परे वन बालकोनवा में तो के डर है हम तो लगाए बाटी भैया बालकोन में लोहा और ओमा लोहा बन करके जैसे भैया जल में बैठियो तीन ताला लगाई के झलवा में बैठ के बहरे तकियो कि जल में से जैसे कोई बहरे ताके है तो ये बात है हमारा सूरीनाम की प्यारे प्यारे जनता की बालकोन में भी आदमी लोग के और चोरी हो जाए रोफ हो जाए ये बातचीत है हमारा सूरीनाम के हमारे प्यारे प्यारे मीठा मीठा जनता तो हम जाए भैया हम लोग के जो फोर्थ सेटर है और फोर्थ सेटर है आसाम ब्ले के और वो है अश्विन अधीन फोर्थ सेटर फाइनल नेशनल अश्विन अधीन बोले है दोनों दाख के और फरखादरिंग में बोले बपाल तेईत फरदाखन फॉर लीडर वास का बसेर ऑफ द फ्रंट वेटलक फरांत वोडलक हैत के बारे में तो अधीन बोले अबे आप लोग के और बात हम बताएंगे कि क्या हुआ सूरीनाम में आप लोग जानो हैं आप लोग जानो हैं फिहा पियर पार्लियामेंटारी रहेगा सिद्रिक फान जमजोन है हाँ तो टोनी अब भी आ गया है तो आपको हम स्वागत करते हैं टोनी इसरी को भी तो टोनी बात ऐसे है कि सेड्रिक सैमसन हैगा फिर यहाँ पे एक पार्लियामेंटारियर है और दोंदर दाख के भैया ओके सबन आसाम ब्ले में बड़ा जबर एनडीपी के औरत लो लपेटी से भाए जो लपटाई लपेटी से ओके इतना लपेटी से कि एनडीपी के औरत सब पार्लियामेंट छोड़ के बहरे चल गए है। बोले है कि सैमसन बोले तू रेडियो हलान के गो रेडियो है बोले तू वहां इंटरव्यू पे बोले बाटे कि औरत न चाहे सरनाम में प्रेसिडेंट होए के बोले हम लोग वही मारे डेमोस्ट्रेट करे बोले तू कचाहे सॉरी मांगे के वन बोले तू कैसे बोल सके कि औरत के नाम आएगा सरनाम में प्रेसिडेंट होए के और बोले तो के ए बोले फ्रॉलक प्रेसिडेंट मुझे बन अस क्रिटिक और पर बलाई तेजस वर्ड को कोपल अन इट फेट दैट से अन फ्रॉ इज दी फॉरमेंड स्प्राक स्कूटर मेरे नाम बिरे फ्रॉलक एनडीपी पार्लियामेंटारियस सैमसन बोले हम थोरो सब औरत के बुल्ली बाटी सैमसन बोले है बोले हम बुल्ली बाटी कि सीबोन के कभी ना चाहे प्रेसिडेंट हो एक बार हम लोग इतना फ्रॉक तेल करीला का बोले हैगा पार्लियामेंट में सीमोस आईबे न करे है तो बोले ऐसा औरत प्रेसिडेंट लाइक ना है बोले ई बतिया हम बुल्ली है बोले हम थोरो बुल्ली एक को औरत के नाम आके प्रेसिडेंट हो के बोले हम लोग कितना फ्रॉक यस तेल कर ली है कि जैसे स्कूटू को पॉलिसी ब्यूरो में से इतना क्विक क्लास हो गए है इतना स्कूटलों यहाँ रोतसोई करे है यहाँ चोरी हुए अब बोले प्रेसिडेंट के चाहे आए के फरकलार करे के अब बोले आईबे न करे मावे वही तो ओक में से अने tijdens de regering van NDP, je bouwt als president, en trouwens het ook dezelfde probleem, die president, behoud komt die awe hegen, DNA mee. Toen je baat he, van Samson reageerde later met een schriftelijk verklaring waarin hij stelde dat zijn uitspraken uit een interview volledig uit de context zijn gehaald. Volgens hem was het nooit zijn bedoeling om een vrouwen te discrimineren of hun geschiktheid voor de presidentskamp in twijfel trekken. Hij benadrukte dat bestuurders moeten worden beoordeeld op hun functioneren, integriteit en bereidheid van de verantwoording af te leggen, ongeacht hoe jij ouder hoe jij marad hoe of aanbloeien jano bhaiya jun samay pe verkiezing periode raha us samay pe Tony बोलत रहा एनडीपी का दमियन बोले उन्होंने कूली आस प्रेसिडेंट जानो ही बतिया बोले हम लोग कूली के नाम मांगे ला देशवा के प्रेसिडेंट कभी ना हुई तो उस समय पे अदमी लोन मुना कोलतरा की भी डिस्क्रिमिनेशन है और यहाँ सैमसन के सामान पहले है और सब बोले ओके चाहेगा फौत अपन लेवे के लेकिन अब तक सैमसन बोले कुछ फौत न कर ली तो बोले कैसे भला हम अपन फौत जाबे माफी मांगे बोले दत खात नीत खबर तो हम जाए तरी मारोको के ओर भैया हाँ 37,000 ना एगो भैया 37,000 मिनीग्रांटन फान आउट खुटा तरखकेर नान मारोको 17,000 मारोकाने जोन गैला खुटा में औ है वो स्पांस जगह है स्पाइन में खरेंच फान स्पांस एक्सक्लेव बोले हुआ पसे हबड़ा होत रहा बोले हेगा ओफर स्टाकन से अल मेर दन सेवन दर तक तैसन मरकान से मीनी ख्रांतन मिग्रांटन इनमिडस teruggekeerd naar Marokko. Bole dat meldt de Spaanse minister van de Binnenlandse Zaken. Or bole hega. Bole 57 mensen bole John Burke marge bhi hai. Ekar bare Spaans krant bole hai. Bole hega. Sterke toename van migranten werd in Ghouta een noodsituatie uitgeroepen. Bole kritiek hega Italië, Finland, Frankrijk en Duitsland ke. Ze riepen onder meer op grenscontrole.

की ओर हमारी जनता। पुलिसी शेफ हम जाला श्रीलंका के ओर दोस्तों, बहुत जनता है हमारा हिंदुस्तानी, जगह देखी से श्रीलंका में जाई के फकरांसी से बोली तो श्रीलंका के न्यूज भी हम तरी बतावल कर भैया हीरा। तो श्रीलंका में भैया हुआ मौत के सजा मिलल है, श्रीलंका में मौत के सजा मिलल और के मिलल है एगो फोरमाल का पोलिसी शेफ के मौत के समाचार मिलल है। का कल रहा 2019 में निखंतीन में एगो दौड़ के बम अंसलाख कल रहा देशवा में, हाँ जहाँ पे 200 निखनन सेफ तक आदमी मर गया रहा श्रीलंका में, अंदर भी 3 नीदरलैंडर भी वही में रहा जो मर गया रहा। एगो पोलिसी शेफ ई चीज कर ले रहा और बोले एकर बारे में बोले हो बरूप गैला सकवा हो बरूप गैला 2020 में बोले और पोलिसी शेफ ओकर नाम बा जया सुंदरा और बोले एंड तुन मालक मिनिस्टर फॉर डिमेंसी डिफेंसी हेमा सीरी फेर्नांडो नोक से फ्राइकस्प्रोके मेंसे और 66 यारक पुलिसी शेफ जो रहा हो बरूप कर ले रहा हो खरेफ्टोक में श्रीलंका ही 67 हुआ दो स्ट्राफ आउटफुर कर दी से। कितना आदमी बोले सूरीनाम में भी जाही करे के भैया जो ने सूरीनाम में दो स्ट्राफ है बाकी हुआ पे सब वर्किंग में ना लावे हैं बोले ना माखे और जो एगो दुगो जो हुआ जो आदमी लोग के मोर्त करे है रूफ करे हैगा एगो दुगो जो दो स्ट्राफ मिले भैया 10% फन द क्रिमिनलिटी फॉर लाख्ट वर्ड मैं या खुद इन सूरीनाम दून सनी मैं सेंस डाल से इन सूरीनाम का है बखदान में से इस एतलान फेल बेटर खवर्द कुआ द क्रिमिनालिटेट तो ही बतावे हैगा द स्ट्राफ वन वर्द दोर खास उमखसेट इन लीफस लांगे गफांगने स्ट्राफ 1976 में मर इंडियांसल इन लिखतिक दिन्स बोले 4 तारिक अप्रैल के 2019 में आल गवार्स्कीर फोन मोगलेके सेल्फमोर्ड आंसला दोर इस्लामिसे टेरोरिस्टन द अथॉरिटीटन सोनन टू हिन एक्शन हैवन गनोमन द आंसलागर वर्द प्लास ऑफ 21 अप्रैल 2019 बोले हैगा जहां पे 3 केर की 3 होटल में 279 आदमी मरल रहा और 500 आदमी चोटाई रहा। तो ये बात है दोस्तों श्रीलंका रेक्ट बांग श्रीलंका ही फॉर्मल का पुलिस शेफ तर दौड़ फुट और दिल उमदात है इन 2019 दौड़ लगा बम बम आंसलागन इन इट लैंड नीट ही वेटन टू फोरकोमन और बोले दारबे क्वामन 279 मेंशन ओम हेड लीवन बोले ना बचाई पा रहा उकर बारे में बोले यहां पे दोस्तों ओम तो फोरकोमन और चियुआ ऐसे भले पुलिस शेफ के बारे में है हमारे प्यारे प्यारे मीठा मीठा जनता हमारे नानी लोन हमारे प्यारे प्यारे भौजी लोन। तो अभी आप लोग को हम और आगे के समाचार यहां पे बताते चले हैं बातचीत भैया। जब देखो पहले भी रहा भैया सूरीनाम के जल भर गए दिलब बद्धू आ गया है। हाँ दिलब आपको भी हम स्वागत करते हैं राजा सांतो बोमा ओफर लोथ हो गया भैया जहलिया से अब लंटी के पैसा ना रहेगे सबन के खवावे के बुद्धू खवावे के भैया अब हुआ पे अरेस्टांत बहुत ढेर हुई गए अब ली फ्रांसीर के लांटी पैसा 6 हुई गए ना भरी अब घास खाइयो। हाँ जहल के मान चीधे पुलिसी बिरो के और ली फ्रांसीर जो खाई ले यात्रा देवे उस सब बोले हम लोग 6 से पैसा ना पैली है तो बोले जब पैसा ना पैली है मैं बोले तो हम लोग जहलीवन के सोची ला बोले हम लोग कर्जा ले ले बोले हम लोग जाएला जहलीवन के खवावे भैया और बोले हम लोग कर्जा ले ले हम लोग जाएला जहलीवन के खवावे और लंटी 6 से बोले हम लोग के पैसा ना भरी से हमारा सूरीनाम के लंटी काहे ना जहलीवे से तरकारी बोवाई के खाई पकवावे रे भैया।

से इसबे जा है और जाए के सबके रूफ कर कर चोरी कर कर असंतोमा में बैठ के जैसे होटल में बैठ के खाई के गोरे है और कैचरे जाए जाए खाई बनाई बनाई देवे है। तो इसबके हम बताई है लांटी के चाहे वही कम कर्तवन से खेती बाड़ी करवाओ तरकारी बोवाओ और वही तरकारी ले के चलो अपने तुलो बनाओ असंतोमा में और बनाए बनाए अपन मेड जहलीवन के खवाओ। ऐसे चीज आजा हमारे भले ही फंसरी नाम सवेल सवेल द लिक्स हैव में से मसे हैव खिंग खाल्ट। तो गीता सिगुलाम भी आकर हमारा हमारा प्रोग्राम में जुड़ गया है। तो वेल से सेल्फ इन द खफान इस वेल से द लिक्स लीफ खान खान फोर्सेट में से एंड इट कानी द ऑन द नेम इस टेलन दस ए कॉस्टन फॉर कुडे ट्रांसपोर्ट पर्सोनेल और बोलेगा महीने से लांटी पैसे ना भरी से। तो एक बारे में मिनिस्टर फंजुसियन पुलिस ले गए ले तो बोले एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट बोले हुए अंदेल फन लीफरेंसिल फलूप दोरखान एड फ्रंटवलेकाइल कफूल एड फ्रेड फन मस्कापलक फॉल्गन ग्रुइ द अनसेकरहेड सोंदर स्नेल ओप्लोसिंग ड्रेग द फोसल फोर्सिंग फन अरेस्टेंट अस नोग वैलिड फास्ट लोपन। तो ये हमारा जहली उन कहते भैया लोन जहल में हुई हो तो बोलियो ये जोनिया बोले तू मांगे हम जाए वहाँ खेती करी। अरे मिया मोटा आए ऐली बाटी खूब खाए ऐली बाटी जो रे हम अपन जहली वक काट के जाए के चिनवन हिंदुस्तानियन के घरवन में फिर रोफ करी और रोफ करके पैसा जितना मांग बनाए बना ले पकड़ा या फिर आवे यहाँ होटल में हम आइए हमें तो लोग कमाई के खाओ। ई जहलीवन बोले है और हमारा रखे रिंग श्री नाम के सदुन ही लमा निक्स एर्मी में से ब्लैफ मादी में से फुद से ब्लैफ मादी में से फुद एंड दिस इज। अब देखो एक ना एक चीज के बाद जितना है 100,000 एसआरडी के बात है भैया 100,000 एसआरडी के बातचीत है जो लुटेरा जाए के हाँ लुटेरा जाए के एगो रास्ता के नाम बा खेराल स्ट्रासर नाम में 27 तारीख जुली के और बताई गई हैगा तिस 27 जुली एंड 29 जुली प्लाफोन तूर के घर के प्लाफोन तूर के और जाए के घुस के एक और एगो द्रियन फेफ तक यारक आदमी घरवा में रहा और ओके का बोलेगा 100,000 पैसा चुरा ले इस और इद्रिय से इफन तक यार का नमिया घरवा में रहता और घरवा जो रहा ओकर भाई के रहा और बैतल लांत मेरा भैया ई भैया हुआ रहत रहा और ओकर एखनार जो घर के रहा ओकर भाई बैतल लांत मेरा भैया कितना आदमी जो सूरीनाम देश में भैया सुंदर घर बनाए के छोड़ देवे हैं अपन सास के ने अपन माई के ने अपन भाई के बोले तू ही घर में रहो तो के ना हो तो कुछ रह के चिराग पानी भरिए हम आवे तो घरों में प्रेम से रहे और कुछ पैसा भी छोड़ दे है लेकिन चोरन ओहू जाए के मार दे भैया होंदत दैसन ऐसे दी मारी से एक दू इसी से ना मारी से भैया बहुत बड़का पैसा है जो नदमी पसीना से पैसा कमा है ओके तो मालूम है कि कितना मेहनत से पैसा आवे है। अब देखो कोर्स हैगा सूरीनाम के और वो है एरो है ट्वेयम फिरतख एरो ट्वेयम फिरतख कोमा ट्वेंटख एसआरडी इन एरो तुरियो तपयो ट्वेयम फिरतख कोमा ट्वेंटख एसआरडी और जयो कीने एरो तभरियो द्रियन फिरतख द्रियम फिरतक एसआरडी के 1 euro भरियत उतरा पयो एगो एरो और अमेरिकन डाला है तक फैक्ट का ऊपर से अधीन का बोले है बोले सूरीनाम में जितना दुकान है बोले सब पैसा तुरावे कीने है एरो डॉलर बोले चीजवा बंद करे बोले सब चाहे संतराल बंग से करे रे भाई जब आदमी हंदलारे हंदलारे जब पैसा ना पाएगा डॉलर और एरो जैसे वो अपन सामान कीन सके देशवा चलाई सके अपन दुकान चलाई सके तो वो जरूर कीनी भैया ओके पैसवा नुकद खाएगा
तो यहाँ पे आप लोग को बताए द कोर्स इज 42 तक हाथ मिनसे तो हम बोली आप लोग को बताते ही रहेंगे ताजा ताजा ताजा ताजा खबर। तो हमारे जनता, हमारे प्यारे प्यारे जनता, यहां बताए गए हैं, यहां बताए गए हैं सिद्रिक के बारे में आप लोग को तो हम बता चुके हैं, कुछ नया न्यूज आप लोग को हम बताएंगे। हमारे जनता मथुरा का ओर हम जाए ना, फिर यहाँ पे यर है आप लोग जानो कमिश्नर फॉर पॉलिसी रहा, फिर मिनिस्टर फॉर डिफेंस ही हुई रहा, एंड टाइट फॉर फिर यहाँ पे रखे ने फिर यहाँ पर ब्रिंसवेग मथुरा का बोले हैं भैया मथुरा फिन की एनडीपी नीट कॉन्सिक्वेंट इस बोले जब एनडीपी बोले मेन हेले खसेन बोले हमार हेले खसेन के बोले तू लोग क्रिमिनेला बाटे बोले नी माथा दस्तान फिन खनुमन मथुरा फिन एनडीपी नीट कॉन्सिक्वेंस तुम द एनडीपी में एंड मेन हेले खसेन क्रिमिनलाइजेर्ड हैव निमन स्टैंडपॉइंट इन खनोमन बोले है बोले बाकी अब बोले वनेर की अब एनडीपी नि स्वार प्रोटेस्टेर तेगन मीडिया आइस्प्राकन जोन पे यहां पे के पार्लियामेंटेरिया है सेडरिक फान सैमसन बोली सेगा के को औरत के प्रेसिडेंट ना चाहि होए मतलब सिमोन के ना चाहि बरोए के त एनडीपी के भैया चारों बगल से गरम-गरम हवा लगे लगल है हां जा ना चाहि हवा लगे के हुओ हवा लगे भैया औरत जितना एनडीपी कर रहा सब निकर निकर बहरे चल गए ऐड प्रोटेस्ट। तब यहां पे का बोले कृष्णा प्रसाद और काबले मथुरा बोले है जोन समय पे हम रखेरिंग में रही एनडीपी के आदमी हम बोले रहा हम क्रिमिनल हमार हेला क्रिमिनल तब बोले उस समय पे कोई अवस्थान नहीं ला बोले आप ही सबके गरम गरम हवा लगे तू जाने हिंदुस्तानी में कहीं और कुछ लग जा हम में कौन काम है बोले के उस समय मीठा मीठा बोलिया तू लो तो समझदार है हम का बोले मांगिला वन ईयर द एनडीपी सेक्स शुल्क हार द वार्डन तब बोले दान खा एक सेकंड बोले कि उस अब इर लगना है बोले 2015 में बोले हैगा मेन एंट्री द डेट इन द पॉलिटिक और बोले जस्ट बोले जे एनडीपी बोले हमें बोले रहा हम बहुत बड़का क्रिमिनल बाटी बोले हमार हेल हसन बोले हमार आदमी हमार बेटवा बोले सब क्रिमिनल है बोले एकर बारे बोले फॉर द रेक्टर ले गली बाटी और बोले रसीद दुखी के ले गली बाटी रेक्टर ही तुन फोनस आज कस्टेल फन हिर पार्लियामेंटारी रसी दुखी एनडीपी यर के तुन हे निमान फन एनडीपी इन एक स्टैंडपॉइंट दारिन खनुमन हेट वाज अंडर हेडक प्रेसिडेंट दी तुन फोर्थेटर वाज फन ला पार्लियामेंट मेन इज नोइट क्रिटिस गवेस नाद एगन कोलीगा दोर ते सेगन दैट से दैट नीट हैडन मुटन सेगन वन इज इट इमान फन हेन इज दैट सी इज दैट हेट मेड मंटल देयर लीव द वर्ड बदेक्ट एंड एर खेन कॉन्सिक्वेंस बदरा इस बाय मथुरा बोले हैगा। और तो लोग जानो भैया एनडीपी में हमारा निकेरी के सेठ रहा उस समय पे रसीद दुखी अब रसीद दुखी एनडीपी के पार्लियामेंट में ना बैठे तो बोले ये आदमी अपन घर द्वार ना चलाई पाई पैसा ऐत ना आई पाए तो बोले आई हमसे पूछे कैसे ऐत आई पाए तो पहले भैया लूटो खाओ और दोन हो जाए तो बोली कहाँ से अब हम लाई। तो ये बात है हमारा सूरीनाम के यारो हमारे प्यारे प्यारे जनता एक लाश एक लाइक मिलल है हाँ ओ बात बता दी भैया एगो लाइक मिलल सूरीनाम में और उ लाइक वासन में से इन ऑन बिंडिंग आन खतरोफन ये बात हुए फैमिली लेट बोले लीड ओवर लीडने और बोले हैगा फॉर आल्स नॉक सेन खीन अनवेशिंग की कोई ओके मारी से और एकर बारे में अंदर सुख हुए कैसे है फ्लोरा के सिपाही एकर बारे में खोजे है ते एगो घर में एगो लाइक मिलल है दोस्तों लेखाम फॉर अन फेयर खान द स्टार फॉर ऑन बिल्डिंग अन क्रॉफर्ड इन एन वोनिंग इन एन अनबाउ अबे घरवा बनत रहा जिस कंप्लीट घरवा ना रहा क्लार भैला मालूम ना है वो घरवा कैसे रहा और कैसे
ना रहा हमारे जनता हम सोचेला तो लोग के एगो हम स्पांगाना सुना दे और यह नाचे नाचे हाँ शारदा तरी नाच लियो तू तरी नाच लियो गनवा पे स्पांग स्पांग गाना तू जाने हरदम चलाइला तो पलंग सगवन के भैया केसरी जी के है।

ओ बोले टूट जाई राजा दी, बोले पलंगिया पे का है भैया। अच्छा टूट जाई तो देखल जाई, दूसर बेदी की ना है भैया, दूसर बेदी की ना है, टूट जाई तो ये बात है। भोजपुरी सॉन्ग के बाद में हम जानते हैं हमारी जनता, हम जानते हैं और वो कहाँ है, हम जानते हैं भैया। सूरीनाम में तो जानो चारों बगल जाए के आदमी पेन कर सके। हाँ सोशल मीडिया पे रखा हुआ आदमी ई जाए खेल मतमाद ना है, एकवा में जाए है ना है, एकवा में ना है। आदमी बोले हम दौड़त दौड़त कहने के तरह तेल जाए जाए भाई, खेल अवतमान में पैसा ना है तो बिगड़ल है, तो ई है फलान ढकान काम ना करे, पैसा ना देवे। तो यहाँ पे बताए गए है क्या आती है मशीन से क्या सूरीनाम देश में हमारी जनता, आप लोग को पता है तो, आप लोग को तो पता है सूरीनाम में आती है मशीन से गा। और बताइए गए कंस्यूमेंटन कॉन्फ्रेंटियर तो और दिन आती है मशीन से फाक लीक ऑफ बेटन वर्कर में पैसे में ना रहे, और ये पैसा ना रहे भैया तो टूटल रहे तो जानो है। तो एक बारे में एगो बंक कंसलेंट है गा और है का ट्रेंस कॉनेस गोनेस बोली से गा दैट हैड फील हेल कॉस ओम आरटीएम नेटवर्क द अंडर हाउडन मशीनिया अंडर हाउड करेंगे, बोले बहुत ढेर पैसा हम लोग के लगे है, बोले एकर बारे में बोले बहुत ढेर इन्वेस्टेर करे पड़ेगा, बोले टेक्नोलॉजी ओम बेट ब्लाइफ में ट्रेंड एंड ऑनट्विकलिंग आती है, बोले है नेटवर्क सूरीनाम के, बोले है बखरेबदार व्यवहार फॉर हुकिंग नो साकलक वारन, तो उसे मांगेगा कॉस्ट फॉर हुक करे भाई ऑब्जेक्ट वन इंटरनेशनल मार्क द कॉस्ट रीडलक लाख तकलीफ वेट है द साम लिविंग। तो अब तो जइयो पैसा ऐसा पेन करो भैया तो और ज़्यादा पैसा लगी वहाँ, बोलो सबके कॉस्ट बहुत जबर है, तो लोग जानो तो अब वही मारे जा बुढ़िया परनियन हुआ पे पैसा जब पावे है आओ फे आवे है, तो लड़कन के बोले है बेटा जइए सब पैसवा हमार निका लिए, कारण की अब बुढ़ियन पुरानी थोड़ो बेर बेर जाए ऑटोमेट खोजे देशवा भर में, एगो में जाए टैक्सी भर के लड़को बोली बेटा एकवा जा, तो उस सब ऋषि को ना मांगे लेवे, तो एक दाई में सब आओ फी के पैसा निकाल के जे घर में धरे हैं। तो अब उधर भैया बोले जहाँ शुक्रु है वहाँ चूटी है, और जहाँ पैसा है हुआ चोर है, तो बूढ़ीवन के जाए जाए वही रूफ करे हैगा चोरवन भाई। ओमदा हम लोग के ऊपर है अपन ऑनट्विकलिंग फॉर द फेल खेत में इन्वेस्टियर न करे है। तो सुनील दीप गजरी भी आ गया है, आपको हम स्वागत करते। अगर जो ऑफर है जितना ऑटोमात सब में पैसा धल्ले रहत, हर एक भीड़ में कुछ न कुछ मुखला खेत कर ले रहे, तो आदमी ना रहत के एक दाई में जाए के सब पैसा निकाल के घर में धरत, वन ओके जब ब्रेड कीने कुछ कीने कहेगा तो बेचारा कहाँ जाएगा पैसा लेवे, तो सब पैसों निकाल के घर में धरे भैया, तो कोई बेरी के नीचे लुको आवे, कोई यहाँ लुको आवे, कोई हुआ लुको आवे है, तब चोर जाए के लपेट देवे भाई। दिस इज इन फ्रॉम द ग्रोस्ट प्रॉब्लम इन इट लॉन्ग दी नीड इन्वेस्टेड फॉर इन द ICT in de ontwikkeling, de technologie van ons land. Mensen, bijna heel veel mensen hebben hun bankpas, dat ze daarmee ook kunnen betalen. Maar heel veel winkels in Suriname, hoe mogelijk heet na hè? Hier toch bij jou, deel Albert Heijn mee, dat die nog niet een breed hem scan kerke lela. Ik heb bijna nooit geld. Er zijn heel veel mensen, ik werk hier mensen, op mijn werk, waar ik werk zelf, daar komen mensen de hele dag geld. Betaling, ik zit in het betalingsverkeer ergens mensen. Bij mij kan je geen contant geld. Als John Dean hem lukken internet na, hij je kuts hoige he. Dat zijn mensen in een probleem, want ze hebben geen geld. En naki छोटा मोटा आदमी बड़का बड़का आदमी लो भैया वो सब टेलीफोन लेके खाली चले हैं, और टेलीफोन से स्कैन करके दिन भर उसे अपन बताल फकीर करे हैं, अपन पास करे हैं, आलस खास फिया ऑनलाइन में से। तो वो रमिया के जो तू चोरी करियो पड़ते मैंने या कुछ चोरी करियो, तब तो के रोवे के परिवन ओमा खाली अल्बर्ट हैन एक्शन के बॉन घुसेर घुसेर धरल ले, जैसे हमार जो चोरी करियो तो के रोवे के परी बोले कौन चीज उठा ले लिए, मतलब दस सोट ऑनट्विकलिंग मुत इन सूरीनाम गबेरे।
dat zo'n ontwikkeling. Je moet alleen met je pas lopen en meer niet. Chori komt u hui, admi jo sau sau hajar paisa ghar me dhare ba. U sa paisa toke na hoof dhare ke. Alles moet naar de bank verkeer gaan. Oma bank was je vidya na dee pae janta ke. Overheid u garantie na dee pae dat je 24 uur kan geld krijgen. Wanneer je nodig hebt, gaat deze probleem nooit opgelost worden. Hai na ba ya so neel der gajri. Zo is het toch. Dus ons land is nog hoeveel jaren achter. Ik heb het over Suriname mensen. Abham jij bij jou Rusland, Polen. Ke over ha. Bolle Polen heeft Russische ambassadeur ontboden. Polen. Russische ambassadeur ha. Oké, bolle to Laudja. To Laudja appendees bolle hem toke na Mangela. Om uitleg te geven om de neergestorte raket. In de nacht van woensdag, donderdag. Ego raket geral ha. Premier Donald Tux. Jonba na Trump. Donald Tux Joba. Bole hij zei al snel vermoeden ki Rusland ke go raket bole hamar desh mein giral hai bole ekar bare mein ambassadak bole li baati puche ke bole er gaat om de Russische KH-101 raket giral ha ekar bare mein donderdag ke radio op zo bole go kruis raket giral ha aur bole gevaarlijke om een kernkoper ra Tuk zei al meteen ki Polen bole ki het doelwit was van een aanval bole de crash van plaats tijdens een nacht in een zware Russische luchtaanvallen op Oekraïne. Bolle doen ze met Rusland. Bolle een Oekraïne koepen. Bolle kabel kruisraket. Maar dit is mijn gerel. Bolle ongeveer 90 kilometer van de grens van Oekraïne. En raakte niemand gewoon door de gevonden brokstukken. Kon worden wel vastgesteld. Atulonjano Bahia. Polen is EU. Polen is NAVO. Als Rusland een van de NAVO-landen gaan aanvallen, gaat de hele NAVO erop, mensen. En dan moet Rusland voorzichtig zijn. Je kan alles doen, maar ga geen NAVO-land aanvallen. Want dan gaat de hele NAVO hem beschermen. En als dat gebeurt, dan wordt het niet een kleine oorlog, maar een mega grote oorlog. Tessa naam ke kokoa teri se kamti hai bhaiya sab karaka me jarai se bhaiya jatra kokoino ino mile le ma malum na kokoine jarai se ke puiri jarai se pisan jarai se bhaiya social media pe bahut cheez hue hai to Sangeeta Mahesh bhi aa gaya hai aur wo hai almere shehar se aapko hum swagat karte hai Sangeeta ji to fino tweet tak yaar ke ego admi bhaiya bataye gaye hai ga verblijf pas raha ओके मंगलवार के नीदरलैंड में तिलबुर्ग में मिलले पकड़ान है रोटरडम के सिपाही पकड़ी से तिलबुर्ग में जाए के को 44 यार का मन के जे के फास्ट वो जगह नारा एड्रेस ना रहा बोले हैगा बत्रोकन है इन बेड फॉर बरेडिंग फन डू गो ऑन फूरिंग बाय ला क्रिमिनल सर्किट में द अरेस्टेशन फन प्लेस इन द कार ऑफ अ ग्रोथ ऑनसुक ना द इंटरनेशनल कोकेन हैंडल जो साउथ अमेरिका में भईले हम नाम भी साउथ अमेरिका में आप लोग तो जानो है शुक्रवार के रेक्टर कमिसारस इरेमिया के दुई हफ्ता के दुई वीकर इन द सेल ब्लेड सेक्टर ओएम बोले चार गो आदमी मा पकड़ान है 26 तारीख अगस्त के एकर बारे में उपमार सिटिंग है और बताए गए हैगा इन ऑपड्राफ्ट फ्रॉम दुई गो हॉलैंड नीदरलैंड एगो 47 यार आउट बोले फेब्रुवारी में बोले इन कोलंबिया से इन गारास्टेर कोलंबिया में पकड़ान है फॉर द ड्रग्स हैंडल In mei pakte de politie in Colombia nog een Nederlander op. Dus Hamara Hollander, want een bhaiya paaige cocaïne ke maja. To is heb ke jai ke pakdi sega. Colombia me hamare pyare pyare sunne walo hamare janta. Aap lo ne jano bhaiya. Nya bataye gaye hai ga. Twee to drie terrorisme verdachten.
मंगलवार के बुधवार के यहाँ बताई गई है नीदरलैंड में फरोर दिल भले फॉर टेररिज्म अबले दर्द फरदाख्त जो नहींगा वीकर फॉर देंगन फॉर टेररिज्म अबले जो नहीं इसे का कर ले रहा तो बात चीती होएगा तीनों टेररिस्ट फरदाख्तन इसे दो हफ्ता इसके के पकड़ के बंद कैसे रोटरडम में और दर्द वाला के सुख के लिए कमिश्नर्स एगो 16 बरिश के और एगो 19 बरिश के लुंडा है रात के इसे इनफॉल कैसे रोटरडम में Eindhoven में अलगमार में जाए कि सबके पकड़ी से बोले बोले इन फालर वर्दन खीन वापस आंगत्रोफन वेल सेन एंकल गेगेवंस ड्रागन इन बस्लाग गनोमन एर इस कॉंक्रीट डूलवेट ऑफ मोमेंट फॉर आंसलाग इन बील तो ये बात नीदरलैंड के मानचित है हमारे जनता जो आपको बताना हमारा काम है बताना काम है अब देखो भैया आदमी एक मिला ओ तो लेकर रिस्टक से जाए सुरीनाम के बातचीत है भैया हीरा लतूर वेख के बातचीत है अब देखे एक मिला मांगे हबड़ा होए से बड़ा पात पे तो अब यो तो हुआ ओके रोकी जो ने अनमिया हबड़ा हो जाए ये बात हुए है क्रॉसिंग लतूर के और फ्रैंकलिन वेख के तो हुआ रैम करी सेगा जो ने अदमिया हबड़ा हो जाए मा ओकर पछुआ एगो ओ तो रहा हमें जना ओके हास रहा तो वो तो हुआ नगे लेकर पीछे अगोरे उ इनहाल करके जाए के फूत कांगवा का मारी से भैया मुंह फूत खांगर के मार के अपरे पेल भागल है थोड़ा देर बाद फिर लौट के आयल है ब्लैक बेल एगो स्कौतुरा 25 बरिस के भाए स्कौतुरा ओके सिपाही पकड़ के बंद करी से बोले फूत कांगर्स के तू फरेड कर ले बाटे वाना दा खेन ता एके अब्स कमिसारस में गए ले फॉर द रेक्टर गए ले तो कमिसारस एक फ्राई कर दी सेगा वो फेस्टक कर इसे उपमार मिनिस्टर अब बोलिए जॉनी कैसे हुई से कैसी जुआ तो एक बारे में बताई गई है बोले बे अन कॉम्स्ट्रोफन वेस्ट दिनार है स्लाख्त ओफर अन दात खेन टेकर फन लीफर मीन फर्दून मर गए रहा बोले अन इसके स्काकल बताई इसकी मर गए हैं और बोले आई थिंक ऑन द सुकेस का ब्लेकन दैट द ऑटोबस टू द कोर फन आर रेडिंग ओवर द लातूर वेग रेड हे क्वम फन इन द रिक्टिंग फन मार्टिन लिटर कुशवेग मार्टिन लुथर किंगवेग से रिक्टिंग इंदिरा गांधी वेग जाता रहा दोस्तों और बताया गया द पुलिस ब्लिक नीत दारू पी ले रहा बकन ऑफ आंध्र बदवेलम द मिडलैंड ओकर रेप वेस वेद आहांगन दैट ऑंडरसुक इन गेवोर्डर्ड हे लिखाम फन द स्लाख्टोफर इज नैचुरली इन बेस्लाग गेनोमन अब एकर बारे में ऑंडरसुक होएगा का हुई का ना हुई तो ऐसे बेचारा मर गए भैया अरेडिंग से ये बात है हमारी जनता प्यारे प्यारे जनता बको भैया बारा चकल्लस भाई जो ही रखे रिंग में आवे भैया मिनिस्टर फॉर मेनी लांस बेन लांस साके में बोले कम करतन लांटी लोन के कितना आदमी है अमतनार जो देवल सलारस पावे है भाई तो मिनिस्टर ने आउट फोर्स से तरफ असेंबली मनीष्वर भी बोले हैगा बोले फिर तीन होंदत आख्तम फिर तक आदमी के बोले सलारस हम लोग ब्लॉकेयर कर दे ली बाटी हाँ बिशक मिनिस्टर बोले है बोले हैगा फंड 2000 होंदत फिर फे उन फिन बार अमतनार जो सब न पावे है बोले फन 12 फन 35 तक आदमी के बोले हम लोग ब्लॉकेयर कर देली तो कहे ना 800 हुआ के और करे है बतावे है तो नीतू हेवन स्लैक नेगनन देर तक आदमी बोले हम लोग के उतरा ढेर में से अनमेल द करी से बोले टोटल ऊपर है इस ब्रीद अफकल ऊपर मानदा का 1400 और 8 फेसेस लालस बोले ब्लॉकेयर कर ली बाटी बोले को त्रायक तरह फंड सलारस ब्लॉकेयरिंग के बारे में बोले हों तो ट्वीन सिवे सलारस हैं ओ को ब्लॉकेयर बाकी भैया ब्लॉकेयर तो तू कल्ले है बाकी अरमियन के जो देवत सलारस पावे है ओ के तरीक वेरखन द क्रक्स ना भरवइए जोन ओम तरक पैसा पाए से भैया यहां बतावे करे कि हम लोग के रखेरे 200 मिलियन एसआर दी
niet per jaar ook er paisa pani me chal jaat raha regering ki aur bataye gaye hai ga bole hai ga the winds man for the and that het beleid niet gestoeld is op populisme waardoor informatie pas de samenleving wordt gedeeld wanneer dat nodig is aur bole je kan inderdaad blokkeren maar dan verlies je zo een rechtszaak je moet de procedure in acht nemen en dat doen we aldus minister van Bissa Aruhe Manieres van B oud-voorzitter van onze DNA. Kebare mee, hamare janta. Bhaiya, jo nadmi payal bus pe baithe hain, platform wani ka hum log boli la, ab bole Indira Gandhi weg. Aur platform wani ka ke bole hai, tu log jaane payal busun bhaiya. Bhai se gari jahan chale wo par se inhal kare hai nani. Badi chakal se ekar bane mein omdat filler hai platform wani ka hardam aur bus chauffeur mange paisa kamaye bhaiya. The bus chauffeur ka kare fill wo na mange re to bagaliya mein fits pat hai bhaiya fits patwa pa se chalaye ke inhal kare hai rukloos rai khadragar van bus chauffeurs ke bare mein to ekar bare mein minister van transport bole hai ga bole baraat se over verder maatregel op de rukloos rai khadragan van bus chauffeur af te straffen ab tujhe ye straf kare each yuva to bari din se hove kaise bole hai hiram bole als de koe verdronken is dem en de peur en dat is onze land Suriname hè? Laat die kees op je joen kare are je tu probleem concentreer pijle wat hè? Tab to ke chahi op ab deko bhaiya dui wo kapari ke aanki hiya ban kalle ba freed of bureaucracy ke baan chit hoye hamare janta budhwar ke o nais ego hai aur ego hai ga 29 barish ke dui go london bhaiya freed of bureaucracy aame is ab ghusal hai aur jayega diftal karisega overgedragen naar recherche op het AWG en de politie heeft aangegeven dat ze op later moment bij jabber een bijzonder over de zaak bekend zullen worden gemaakt. Dat betekent dat kan bijle en kan bijle later ik erbare mee samen betekent. हमारे जनता हम तो लोग के बोलीला हमारे तैतवा फिन होई गए हैं हां तजई तैतवा होई गए हैं तो हम में चाही गाना का बोले हैगा रोकी के तो

लोग मरियंता हमारा प्रोग्राम यहां से खत्म आने को हो रहा है और आप लोग को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारा प्रोग्राम सुनने को। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम और हमारा समाचार सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो हर शुक्रवार को 6 बजे हम शुरू करते हैं, मंगलवार को शाम को 6 बजे, सोमवार के दिन में 1 बजे हम हैर हाल करते हैं। बाय बाय स्वाय स्वाय।

भी तुझको रफी की मोहम्मद रफी जी का ये सॉन्ग है। इस मूवी में हीरो था अजीत भाई जो विलन के रोल अब लोग अब वो करते हैं। तो निकट इंद्रियों से स्टका ये सॉन्ग था। तो अगला गीत की ओर हम चल, ये गीत जो है नहीं किया तो करके देख, मेरे ख्याल से इस गीत को हम पहली बार सुन रहा हूं। नहीं किया तो करके देख, और ये है नाइटिंगेल नहीं मुकेश का ये सॉन्ग है, करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ द मिलियन, माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है और मूवी का नाम है चार दिल चार रहे। और निकटीन हंड्रेड का निकटीन 59 का ये सॉन्ग है दोस्तों, आओ सुना जाए।

ओ करके देख, ये तीतल तो बहुत मस्त है भैया। ओ और ये है हाथ जाओ दीवाने आए, मूवी का नाम है सिंहापुर, ऑल इज गोल्ड फॉर

और हट जाओ और दीवाने आए और कौन सा दीवाना आएंगे हम आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं। और सुना जाए मैथिली मुकेश का ये सॉन्ग है।

0: नजर बचाकरी चली गई वो, और क्या क्या गाया है, मशहूर सॉन्ग था हमारी
1: दोस्तों। में भी फुटबॉल कर ले
2: हिंदुस्तानी कब से स्पोर्ट में आएगी भैया द्वारका?
1: ना हिंदुस्तानी स्पोर्ट में आए, हमारे सभन सिलेक्टेड करे सुरिनाम में।
2: ओके
1: या
2: मन हम जाने ला जितना फुटबॉलर जा रहा कपड़ी रह रहा
1: या
2: हिंदुस्तानी
1: नहीं सुरिनाम में रह जाए
2: या एक एक हिंद एरफारिंग बट मैं फुटबॉल इज इन माय स्पोर्ट
1: जय हिंद रहा तकदीर बॉयस रहा
2: या
1: शांति दल रहा
2: पहचान लंगडाम के ओके जाने ला
1: होफ क्लास में जब हम बोली सब होफ क्लास में खेल ले
2: या
1: मार इस कांस न पाओ पहले
2: मक्के कांस ले होता
1: अरे तू जाने तो खेले है और वो अब सुरिनाम से एलफ ताल के फर्स्ट तरक करे
2: दैट में ये नहीं
1: या
2: दैट इज लाइक
1: या
2: वन एक एक एक होड बेन अ नोई की दैट इन हिंदुस्तान एन होखर फुटबॉल में
1: नहीं नहीं नहीं हिंदुस्तानी खेल है सुनान से अस्पताल में यार सीफन तक हमें ससन सीफन तक के बात है एक बकरा के ट्रेनर रहा रफखुनर
2: ओ
1: जैसे वो उज्जर रहा तो
2: या तो क्या कहते खरून बोले थे ज्यादा रफवेद बोले तो
1: मैं नहीं मैं सीरियस रफखुनर अपन टीम में सुनान के सिलेक्शन में दो या तीन को हिंदुस्तानी के ले रहा भी और इस भर ने कॉन्ककाफ कॉन्ककाफ एंड सो फोर्थ जीतल है
2: मैं द्वारका तू फुटबॉल भी खेला
1: या
2: तो के हम कहां फुटबॉल खेले अब तेरे तोरे बे लोग ही तो पकड़ी व्हाट हैव यू फुटबॉल हैज बीन
1: या हम साफ छोटे से फुटबॉल
2: कहां से कहां पे खेले को कोनो फ्री ने किंग ऑफ किंग होन में एक क्लब ही
1: या एक क्लब ही मैं छोटा रहे तेरे को एक क्लब बनाते नहीं थे
2: परसीना अरसीना से हम भी खेल ले बाटे
1: या या ब्रो तो फुट है
2: ब्रो तो फुट हम भी परसीना से खेली पोंपल मूड से खेली और का बोले जो कहीं वो बाल और पाजर कपड़ा अपना लपेट के हम लोग मारी
1: मैं तो जाने पहले जो ले रहा बाल रहा
2: हाँ?
1: वो मेरे को बिना बाल रहा था
2: इधर वही तक बाल अपना मैं याद है
1: तो ओके पंप करके और एको फेटर तो के बांध के
2: हाँ
1: तो धलो तो के संझा खेले तो के सवेरे से एको कार सो में लगा हुआ पड़ जा रहा सी एल रहा
2: द वेरी नीड
1: हाँ तो वो मेरे रोंदम कार्स लगा के घाम में रख
2: काहे खातिर
1: तब ओके जब मरिए तो बलवा स्प्रे पूरे था
2: नो नो नो नो डिड वी सिग्नल
1: जिस तो बाल खेलत के जैसे वो तो पहले बिना बांध रहा
2: हाँ
1: तो बिना बाल जब बोरो हो जाता है
2: हाँ
1: हाँ कोई नहीं स्पेल
2: तो कोई नहीं स्पेल
1: नहीं
2: और हमें याद है तो बिना बांध के बाद बताइए भैया द्वारका तो बिना बंधुआ में एगो कभी कभी बिना बंधुआ निकल जाता जब कहीं फाड़ जाते को बोला हो जाता
1: हाँ वही चीज हुआ था
2: ओ क्या है किसान या
1: जब बिना बाल तो फर के तो मैं पैरा वगैरह भर के तो खेल सकते
2: आओ यो यो यो यो यो इन मेल के यार ताल वाज दैट ओके
1: दैट वाज इन 1960
2: एक वाज नॉट नीड इज गेबोरा
1: नहीं मैं
2: मैं एक एवर वेल में
1: हम या मैं पहले से इनके फुटबॉल देखो जब तुम मौसी ने पंप करे तो उधर रन होता अभी
2: मैं कहां तू रहते भाई राजन
1: जॉनिक में खबर है निकेरी
2: या हम लोग के पछुआ गो बका लेडिंग हम लोग बोले हम लोग डमो आप खेली तो बलवा मारे गोत्र वो हम चल जाए कूद कूद हम लोग

फन हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

0: और इसी तरह से मुकेश से भी आप सुन रहे थे, राम करे ऐसा हो जाए मेरी निंदिया तो है मिल जाए।
1: मैं जागू हमें तुमसे
0: प्यार कितना ये हम नहीं जानते।

और जबकि किशोर कुमार से भी आप सुन रहे थे फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो की प्रोग्राम। आइए गीत की तरफ बढ़ चुके हैं। शमा है सुहाना सुहाना, नशे में जहां है।

किसी की किसी को खबर ही कहाँ है, शमा है सुहाना सुहाना, नशे में जहाँ है। और इस तरह से किशोर कुमार से भी आप सुन रहे थे, चलो मुकेश है प्रोग्राम में। चंचल, शीतल, निर्मल, कोमल, संगीत की देवी,

0: की मुकेश अभी आप सुन रहे थे
1: संगीत देवी।
0: ये रातें नई पुरानी आते जाते कहती है कोई कहानी, सुरों का देवी सरस्वती लता मंगेशकर।

ते कहती है कोई कहानी, ये रातें नई पुरानी। चलो एक बार फिर है सुरों का देवी सरस्वती अल्लता जी, तेरे पवन ढूंढे किसे, तेरा मन चलते चलते।

के चलते लता जी सभी आप सुन रहे थे बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, सुरों का देवी सरस्वती लता मंगेशकर, द वॉइस ऑफ मिलियन सोल पद्माश्री मोहम्मद रफी

सनम उठ गए जो कदम। चलो किशोर कुमार है प्रोग्राम में। ओ मेरे दिल की चैन, चैन आए मेरे दिल को, दुआ कीजिए।

आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो की प्रोग्राम दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। आशा भोसले।

दो लफ्जों की है दिल की कहानी ना, या है मोहब्बत या है फिर जवानी। आशा भोसले से भी आप सुन रहे थे फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो की प्रोग्राम हम तुम गुम शुम रात मिलन की, आजा गोरे सुन ले बात सजन की। किशोर कुमार, आशा भोसले, हम शकल फिल्म का नाम।

ख्वाब की वो रात भर ख्वाब में तुम्हें देखा करेंगे किशोर कुमार।

करीब से किशोर कुमार से भी आप सुन रहे थे फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो की प्रोग्राम मुकेश लता जी चेहरे से जरा आंचल जब अपने सरकाया।

और आशा जी से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, किशोर कुमार वो एक दोस्त जो मुझको खुदा

और जबकि लता जी से भी आप सुन रहे थे, किशोर कुमार है प्रोग्राम में। आंखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो की प्रोग्राम।

किशोर कुमार, साथ में लता जी से भी आप सुन रहे थे। किशोर कहिए कि मुकेश, लता जी आ अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे।

मगर कोई मिला न अपना। किशोर कुमार से भी आप सुन रहे थे फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो की प्रोग्राम। आप सा कोई हसी दिल रुबा ओ दिल नशी।

हमने देखा ही नहीं आपसे पहले। और इसी तरह से फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो की प्रोग्राम अगर तुम न होते चाहत न होती।

ये लता से अभी आप सुन रहे थे फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो की प्रोग्राम किशोर कुमार मंजिले अपनी जगह रास्ते अपनी जगह।

0: हर काम के लिए, हर अकफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 6 5 2 2 7। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het Nederlands kabinet wil dat de Europese Commissie onderzoekt hoe tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta konden binnendringen. Minister Van der Brink eist van de Tweede Kamer een evaluatie. Afgelopen

फाहम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 3 2 6 9 8। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, एक बार फिर से स्वागतम। वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड नतिलक बदंत सोसो लोबी लोबी अंत ब्लेसिंग्स। तो जो भी रेडियो का काम हो, देंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। सभी जानकारी 9736 2247 40, दफ्तर कतार का नंबर, स्टूडियो कतार का नंबर 9736 2247 40 पर आप तार करके सभी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इश्तिहारे खास फरमाइशें या जरूरी खबरें के बारे में, तो जो भी रेडियो का काम हो, देंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यार, चर्चा करते रहना फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के बारे में। इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने एकदम प्रोग्राम की तरफ लेकर चलते हैं आप श्रोताओं को। हम पहुंच चुके थे फिल्म संगम तक और उसी फिल्म में से नगमे चल रहे हैं। अगला बयान बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनने को जा रहे हैं आप सभी को। लाखों करोड़ों का दिल चुराने वाला द हार्ट थ्रब ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश जी साथ दे रही है। कुछ आवाजें सुनेंगे विजयंती माला जी के, मिलकर सुनते हैं।

ब्यूटीफुल सॉन्ग बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, फ्रॉम द मूवी इस संगम टाइटल सॉन्ग uit 1964. लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला रमायती मुकेश जी के ब्यूटीफुल आवाज में कंपोज बाय शंकर जय किशन और अल्फाजे थे हजरत जयपुरी जी का. अगला बयान एक और जबरदस्त सॉन्ग फ्रॉम द मूवी संगम. सभी गाने इस फिल्म का सुपरहिट साबित हुए. ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर एक बार फिर सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी साथ दे रही है लता मंगेशकर जी.

प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाया आप सभी को, सुर का बादशाह द क्वीन द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी, और थोड़ा बहुत साथ दे रही थी लता मंगेशकर जी। शंकर जय किशन के सांच पर अगला बयान सुनाने से पहले कुछ आखिरी शेर्स हो जाए यारो आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में। फॉर द शेर्स लॉफर्स, अर्ज क्या है यारो कि ये जो जनाब है ये तो खुदा से भी लड़ना चाहता है यारो। अर्ज किया है कि कभी फुर्सत से हिसाब करेंगे तुझसे ऐ खुदा, कभी फुर्सत से हिसाब करेंगे तुझसे ऐ खुदा, कि मैंने गुनाह ज्यादा किया या तूने जख्म ज्यादा दिए। नींद तो क्या आएगी यारो, नींद तो क्या आएगी यारो, मौत आई तो सो लेंगे, कुछ ना किसी से बोलेंगे क्यों भाई। होश हालात पर काबू तो कर लिया मैंने, होश हालात पे काबू तो कर लिया मैंने, उन्हें देखे फिर होश खो गए तो क्या होगा यारो। दिल करता है कि लिपट जाऊं रूह बन कर तेरे जिस्म से, दिल करता है कि लिपट जाऊं रूह बन कर तेरे जिस्म से, कि जब तुमसे जुदा हो, कि जब तुमसे जुदा हो तो तेरी जान ही निकल जाए। आखिरी शेर, जो लोग आपस में हम करके बात करते हैं ना, जो लोग आपस में हम करके बात करते हैं, वो एक दूसरे के हम दर्द होते हैं यारो। ये था कुछ आखिरी शेर्स। अगला बयान ओ महबूबा, ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी संगम नेगेटिव फीलिंग्स। एक बार फिर लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला द हार्ट थ्रॉब ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश। ओ महबूबा, शंकर जय किशन के मास्टर पीस ऑफ कंपोजिंग मुकेश जी के ब्यूटीफुल आवाज में। आई लव दिस सॉन्ग।

Uchu Raniwala, the heartthrob of millions, the mighty Mukesh Jee Ke Beautiful Awaaz Mein, Yati Sundarbiyana, Absurdavani, Shunad, the film Sangam 1964. अब जरा दिल थाम के बैठिए हमारे प्रिय श्रोताओं, एक बार फिर वही महान गायक द हार्ट थ्रब ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश, जो लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला था और जिसे हम लोग रोजाना भी याद करते हैं और करते रहेंगे, ऐसा गायक वो था जो अभी कितने लोगों के दिलों में बसा है। वही महान गायक माइटी मुकेश का एक जबरदस्त सॉन्ग जरा दिल थाम के बैठिए कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। अ मास्टरपीस ऑफ कंपोजिंग बाय महान संगीतकार जोड़ी शंकर जय किशन, मिलके सुनते हैं। रोने को दिल चाहता है, बार बार जब ये नगमा मैं सुनता हूं तो दिल फट जाता है।

अति सुंदर बयान श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया ऐड फिल्म संगम 1964 लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला द हार्ट ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश जी के मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना और साथ ही साथ आज का इस हसीन प्रोग्राम का ये आखिरी बयान था। देखते देखते वक्त भी करीब आ गया है यारो आप सभी से विदा लेने को। यही आशा उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूं कि जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम कार्यक्रम आप श्रोताओं को पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले दिनों में मैं आप सभी से फिर मिलने वाला हूं आवाज के जरिए, तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना जहां पर भी हो जिस हाल में हो। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे और हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ दिन हो मैट हेलफील्ड लेस्टर प्लेजीर के साथ। तो मुझे आपसे भी इजाजत दे और जाते जाते हमेशा की तरह तो आदत से जो मजबूर हूं ना कुछ सुना देता हूं, तो मैं कोशिश करता हूं आज आप सभी को कुछ संगीत के साथ सुनाने को।

तुम्हारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से मैं करते आ रहा हूँ, वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ। फ्रॉम द मूवी ललकार नई हिंदी ट्वीन से कंपोज बाय ब्रॉडिस कल्याण जी आनंद जी, और हमेशा की तरह आप श्रोताओं को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी की। आज गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा। जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसलिए हम लोग तो सदियों से आप सभी से यहाँ से कहते आ रहे हैं यारो कि हब त्यू नाश ताल तेज लीफ है, कंधे से कंधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो इस शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम संगीतकार का दास्ता नामक कार्यक्रम, और कुछ नगमे लेकर आया हूँ पुराने जमाने के महान संगीतकार श्री जय देव जी का। उसके बाद आप सुनेंगे सिर्फ नगमे जिन फिल्मों में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है, बीच में कुछ ज्ञान के बातें हैं, शेर शायरी भी है। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, जहाँ पर ही वो जिस हाल में हो, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुँचे। रवि साहब

आलो मुस्कुरालो, महफिले सजा लो। रफी साहब जी के मधुर आवाज में हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। तो हमारे प्रिय श्रोताओं, आज का इस हसीन कार्यक्रम का शुरुआत मैं करने वाला हूँ एक महान गायक हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, दिग्गज भूपेंद्र जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे ये अति सुंदर बयान, दिल धड़कने की साथ दे रही है शोभा जोशी जी, म्यूजिक डायरेक्टर जयदेव वर्मा का बनाया हुआ ये अति सुंदर मीठा धुन आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

beautiful song, wonderful song from the movie Trico Cachau Taco 1983. Maestro J. Deo Verma ka compose kia hoe ti sundar bayan Bhupendra au Shobha Joshi ke awaz mein. Agla bayan ko sunane wala hai aap sabhi ko. जरा दिल थाम के बैठिए, सुरो का बादशाह रवि साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में फ्रॉम द मूवी अंजलि 1957. मैस्ट्रो जयदेव वर्मा जी का बनाया हुआ है अति सुंदर बयान. लिखा है न्याय शर्मा जी ने. बुद्धम शरणम गर्षमी. रवि साहब

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग रवि साहब जी के मधुर आवाज में कंपोज बाय मैस्ट्रो जयदेव वर्मा uit de film अंजलि 1957. रूप की धूप तो ढल के रहेगी, क्या बात है. ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनन के जा रहे हैं आप सभी को एक बार फिर पद्मश्री मोहम्मद रवि साहब जी uit de film जियो और जीने दो 1969 हसरत जयपुरी के अल्फाजे.
1: शाबाश शाबाश मेरे बच्चे.

0: निकल
1: गई बड़े मजेदार सॉन्ग आप श्रोताओं के सामने पेश किया गया, रूप की धूप तो ढल के रहेगी, एड फिल्म जियो और जीने दो, रवि साहब जी के बड़े ही मजेदार आवाज में हजरत जयपुरी के अल्फाजे और श्री जयदेव वर्मा जी का संगीत। पावन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है संगीत का दास्तान नामक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। मैं जयदेव वर्मा जी के बनाए हुए कुछ धुने आप सुन रहे हैं। अगला बयान, अब कोई गुलशन ना उजड़े, अब वतन आजाद है, एक देशभक्ति का गाना सुनाने वाले हैं आप सभी को। एक बार फिर शुरू का बादशाह रफी साहब जी, एड फिल्म मुझे जीने दो।

अगला बयान एक बार फिर रफी साहब जी के मधुर आवाज में मजेदार मोहब्बत से भरी हुई बयान है फ्रॉम द मूवी एक थी रीता नेगटिंग एन एन सेवेंटी कंपोज्ड एंड अरेंज्ड बाय मास्टर जयदेव वर्मा।

got a beautiful song from the movie एक थी रीता, रवि शाह जी के मधुर आवाज में, कि ये शोर है गली गली कि वो जवान हो चली, क्या बयान था।

प्रिय प्रिय श्रोताओं, कुछ ज्ञान के बातें हो जाए ना। एस क्या श्री एरास्मस नीदरलैंड्स ह्यूमैनिटिस्ट एंड फिलोसोफ 1469-1556।

झुकती हवा हो, बरसती घटा हो, न जाने तुम क्या हो। ऐ मेरी हमदम सुलगती हवा हो, बरसती घटा हो, न जाने तुम क्या हो। ऐ मेरी हमदम निगाहों को चुरा के, किसी को तड़पा के, चलो न

जाओ नहीं पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी के मधुर आवाज में संगीतकार जयदेव वर्मा के साज पर। अगला बयान एक बहुत ही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान है। आई डू फिल्म भावना ने तीन तक महान फनकार और कलाकार हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी एक बार फिर पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे। नक्श लियालपुरी के अल्फाजे तो जरा अल्फाजे जरा इन लफ्जों पे अल्फाजे पे जरा ध्यान देना क्या बात है। जबरदस्त गायक जो लिखा हुआ ये बयान आप सभी के खिदमत में जितनी खूबी से पेश किया और जितने तारीफ किए जाए कम है।

0: क्या बयान था ये दुनिया, वो दुनिया है जहाँ इंसान की कीमत कुछ भी नहीं। एड फिल्म भावना 1972 सुरो का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी के मधुर आवाज में कंपोज बाय मैस्ट्रो जयदेव वर्मा, जिनका स्पेशल आप तकरीबन एक घंटे तक सुना। लेखक था नक्श इल्यालपुरी। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, यहीं तक था आज का ये हसीन स्पेशल मैस्ट्रो जयदेव वर्मा जी का, जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारो, कहीं जाना मत।
1: लाइव वनाइट ऑल्सो हाईटेक स्टूडियो इन देन हाग।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुने इंटरनेट रेडियो के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। कुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। अल टैक्सी ड्राइवर्स को भी तह दिल से स्वागतम। बॉयज एंड गर्ल्स वेडिक्स नतीलक बदंत हैं जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें दैंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो सभी जानकारी नुरजीम तक दरीफेंस तक ट्वेन ट्वेंटी सेवन एंड फेर तक। Bent u nog geen lid van Fahun Hindustani Radio, to guzaris binti nibinan kiya ja raha hai, ki aap bhi jald se jald hum logo ka member bane, aur ko bhi banaye, aapko to dher sare fayda hi fayda hai, sabhi jankari, 07-35-22-47-45. Isi tarah hum logo ke baare mein charcha karte rehna, reklam banate rehna yaro, hats off to all of you, और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। एकदम बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। एक नगमा रह गया था सुनाने को फिल्म अकेली मत जइयो, जो मैं तुरंत सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को। एक बार फिर प्रोग्राम में ये अति सुंदर बयान सुनाने को जा रहे हैं महान संगीतकार जोड़ी अच्छा भोसले जी और रफी साहब जी। ये साइकिल का चक्कर भैया,

Beautiful Mazedar Song uit de film Kelly Majeyo Agri. Songtha is a film ka. Aur sunaya aap sabhi ko Ravi Saab ji aur Asha Bhosle ji Madan Mohan ji ke saanch par aid the film Akeli Mat Jaiyo. To hamare priye priye shrotaon sabhi nagma aid the film Akeli Mat Jaiyo 1963 ka main aap sabhi ko suna chuka. Ab lekar chalte hain aap sabhi ko ek movie jo also रिलीज किया गया था 1963 फिल्म दिल एक मंदिर. और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है एक बार फिर मलकाए हुस्न ट्रेजेडी एक्ट्रेस द ग्रेट मीना कुमारी जी के साथ. और महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर राजकुमार जी ने इस फिल्म में भी काम किया है. महमूद का कॉमेडियन है सुबह कोटे के साथ. महान संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के साथ शैलेंद्र जी के अल्फाजे आप सुनेंगे उसी फिल्म में से ये अति सुंदर बयान. टाइटल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी दिल एक मंदिर है. और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को नाइटिंगेल सुमन कल्याणपुर जी और सुरों का बादशाह रफी साहब जी की दिल एक मंदिर है.

सब को छोड़कर आ जाओ, ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी दिल एक मंदिर, शंकर जय किशन के साथ पर रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। तो आखिरी शेर सो जाए यारो आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में, क्योंकि वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहा है ना। दिल पेश करूं या वफा पेश करूं, समझ में ना आए क्या पेश करूं, जो तुझको लुभा ले वो अदा मुझ में नहीं, जो तुझको लुभा ले वो अदा मुझ में तो नहीं, क्यों ना तुझको कोई तेरी ही अदा पेश करूं। निकलता चांद सबको पसंद आता है, डूबता सूरज कौन देखना चाहता है, टूटा हुआ तारा सबकी दुआ इसलिए पूरा करता है, टूटा हुआ तारा सबकी दुआ इसलिए पूरा करता है, क्योंकि उसे टूटने का दर्द मालूम होता है। हम अगर आपसे मिल नहीं पाते, हम अगर आपसे मिल नहीं पाते, ऐसा नहीं है कि आप हमें याद नहीं आते, माना यहाँ के सब रिश्ते निभाए नहीं जाते, माना यहाँ के रिश्ते सब नहीं निभाई जाते, लेकिन जो दिल में बस जाते हैं उन्हें भुलाया तो नहीं जाता। तेरी आंखों के नशे में डूब जाऊं, तेरी जुल्फों की छाँव में खुद को भूल जाऊं, तेरी होठों की हंसी को पी लूं सनम, आ करीब मेरे तेरी बाहों में खुद को भूल जाऊं। आखिरी शेर यारो, जिंदगी में कभी किसी का साथ नहीं छोड़ना, जिंदगी में कभी किसी का साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि कुछ पल लगते हैं रिश्ते बनाने में और कुछ पल लगते हैं रिश्ते मिटाने में, एक पल लगता है किसी को रुलाने में और जिंदगी बीत जाती है किसी को भुलाने में। तो ये था शेर्स, हमारे शेर्स की चाहने वालों के लिए। अगला बयान दिल को छू लेने वाला नगमा क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में, कंपोज बाय महान संगीतकार जोड़ी द ग्रेट शंकर जय किशन और अल्फाजे इस बार मास्टर हसरत जय पूरी जी का, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे।

सुंदर बयान कि हम तेरे प्यार में सारा आलम को भेटे एडू फिल्म दिल एक मंदिर निहित इंद्रियन सेस्तर शंकर जय किशन के साथ लता जी के मधुर आवाज हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं वक्त भी धीरे धीरे करीब आ चुका है तो आज के मेरे हिस्से का कार्यक्रम में का आखिरी बयान आप सुनेंगे एडू फिल्म दिल एक मंदिर और एक बार फिर क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज और जिस खूबी से लता जी ने ये नगमा को गाई है मिल के सुनते हैं जितने तारीफ किया जाए कम है मास्टर पीस ऑफ कंपोजिंग बाय मास्टर शंकर जय किशन मीना कुमारी जी पे पिक चढ़ाया गया ये अति सुंदर बयान की रुक जा रात ठहर जा रे चंदा वन ऑफ माय फेवरेट

beautiful song sunai aap sabhi ko Suroka Devi, Queen of Melody, Lata Mangeshkar ji, from the movie Dilip Mandir 1963, composed by Shankar Jay Kishan. हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, यही तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया। इसी तरह घर को जा रहा हूं उम्मीद लेकर कि

फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है इंटरनेट के लहरों द्वारा तबलाइस्त्र ऑफ फाउंड fm.nl पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम। कार्यक्रम में तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम। कार्यक्रम में तिलक वर्क बॉयज एंड गर्ल्स एंड बुद्धंत हैं। तो जो भी रेडियो का काम हो डेंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो की फाइट सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो कमर्शियल्स हो या तो आप जो ऑर्गेनाइज करते हैं आल्स इवेंट ऑर्गेनाइजर तो उसके बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो तो हो सकता है चमत्कार पे चमत्कार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो अपमात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंडीज भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आसमां कर तो देख सभी जानकारी बेलतेनस कंतोर उर फन मांडर तोत फ्रेडाग फन 9 उर मॉर्गंस तोत 5 उर मिडाग्स दफ्तर कतार का नंबर 07-365-2247 और स्टूडियो कतार का नंबर है 07-362-2077। जो भी रेडियो का काम हो देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यार थोड़ा बहुत चर्चा करते रहना खास करके अगर आप सभी को हम लोगों का कार्यक्रम प्रोग्राम अच्छा लगे तो ये हम लोग चाहते कि जैसे आप सदियों से हम लोग को सुन सुनकर मजे ले रहे हैं आपके हिती प्रेमी रिश्तेदार आन पड़ोसी को लेखन भी हम लोगों का प्रोग्राम सुने तो ज़रूर हम लोगों के बारे में बातें शातें करते रहना और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तह दिल से धन्यवाद। हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने औरों को भी कोशिश करें बनाने के लिए। आपको तो यानी आप लोगों को तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी बेलतेनस कंतोर उर अपने 07-365-2247 फन हार्ट वेलकम। एकदम बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं बीते हुए सप्ते हम लोग पहुंच चुके थे एक फिल्म जो रिलीज किया गया था 1969 जिंदगी और ख्वाब। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है मलकाए हुस्न मीना कुमारी और द ग्रेट ब्यूटीफुल नाज जी के साथ। संगीतकार महान संगीतकार उस जमाने का मैस्त्रो दत्ताराम वाडकर

और लिखा है ये सभी सॉन्ग्स को महान लेखक कवि प्रदीप जी। तो कुछ नगमे रह गया था सुनाने को इस फिल्म में से, तो अगला बयान नाइटिंगेल सुमन कल्याणपुर जी के ब्यूटीफुल आवाज में फ्रॉम द मूवी। क्या बात है, जिंदगी और ख्वाब। म्यूजिक दत्ताराम वाटकर और लिखा है कवि प्रदीप जी। तो मिलके सुनते हैं कहती है झुकी झुकी नजर।

0: कहती है झुकी झुकी नजर कि आज तो कोई आएगा। नाइटिंगेल सुमन कल्याणपुर जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति ब्यूटीफुल हिंदी रोमांटिक सॉन्ग आप श्रोताओं ने सुना फिल्म जिंदगी और ख्वाब कंपोज एंड अरेंज बाय दत्ताराम वादकर जी। अगला बयान एक मजेदार सॉन्ग है और पिक्चराइज किया गया है कॉमेडियन आगा जी के ऊपर, जिंदगी और ख्वाब दत्ताराम वादकर के साथ कवि प्रदीप का लिखा हुआ अति सुंदर बयान, सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी। मेरा बंदर चला है ससुराल, ये भी होता है यार।
1: अरे क्या है प्यारी,
2: जरा खेल भी

0: बाबूजी राम राम, नमस्ते बाबूजी।
1: मजेदार सॉन्ग आप सुना, रवि साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में साथ दे रही थी कमल बरोत, एड फिल्म जिंदगी और ख्वाब। कवि प्रदीप का लिखा हुआ ये अति सुंदर बयान। तो फिल्म जिंदगी और ख्वाब का एक आखिरी बयान सुनेंगे, एक जबरदस्त कवाली है सुनाने को जा रहे हैं पुराने जमाने के मशहूर गाने वाली मुबारक बेगम जी के आवाज में आप सुनेंगे ये अति सुंदर बयान को। लिखा है रामचंद्र बरियान जी और कंपोज किया है दत्ताराम वाटकर। फूल बगिया में भौंरे आए, क्या बात है, ब्यूटीफुल क्लासिकल सॉन्ग स्पेशल।